FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है शुक्रवार, शक संवत 1948, आषाढ़ माह, 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजे हैं अब समाचार।

0: आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16वीं जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, सत्य ही धर्म, तप और योग है। सत्य ही सनातन ब्रह्म है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। ये था आज का चिंतन और अब सुनिए भक्ति संगीत।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से दिन भर जो कार्यक्रम आपके लिए पेश किए जाएंगे उन कार्यक्रमों के बारे में आपको बताएं झरोखा में। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:30 पर आज का अखबार प्रोग्राम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। दस बजे हर रोज की तरह आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 10:05 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ हम आपके लिए पेश करते हैं। इस प्रोग्राम में आज का टॉपिक जो हमने चुना है वो है वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ। अपने विचार इस प्रोग्राम में हमारे साथ साझे कीजिएगा। स्पॉन्सर प्रोग्राम हमारी बेड़ियां दिन में 11 बजे

लाइव फरमाइशी कार्यक्रम आपके लिए हम पेश करेंगे दिन में 11:15 पर, और प्रोग्राम रहेगा म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर भेजी गई आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं इस प्रोग्राम में, और फरमाइश भेजने के लिए सुबह 10 बजे का

दोपहर 12 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। दोपहर 1:05 पर प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में, 1:15 पर फिल्म संगीत, शाम 5 बजे शाम 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे आप सुनेंगे शाम 5:20 पर और 5:30 स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। प्रादेशिक समाचार शाम 6:10 पर हिंदी में, शाम 6:20 पर पंजाबी में। शाम 6:30 पर अमृत बाणी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शपथ। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे।

इन कार्यक्रमों के साथ साथ विविध भारती मुंबई से प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर श्री रामचरितमानस, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हेरा ही प्यार के फिल्मों से लिए गए युगल गाने इस प्रोग्राम में, 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष,

0: अगला कार्यक्रम कोचीपलो में विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
1: प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस पाठ, आज सुनिए भाग 238।

सिंहासन पर श्री राम की पादुका की स्थापना करके भरत नंदीग्राम में पर्णकुटी बनवा वहां इस प्रकार अनासक्त भाव से निवास करने लगे हैं, जिस प्रकार चंपा के उद्यान में भ्रमर अनासक्त रहता है। उनका शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है, किंतु मुखमंडल की कांति पूर्ववत बनी हुई है। शरद ऋतु में जल घटता है, किंतु बेंत विकसित होते हैं और कमल खिल जाते हैं। शम, दम, संयम और उपवास रूपी नक्षत्रों से भरत जी के हृदय का आकाश आलोकित है। उनकी निष्ठा और विश्वास ध्रुव तारे की भांति अटल हैं। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है। श्री राम की स्मृति आकाश गंगा जैसी निर्दोष और प्रकाशमान है। भरत नित्य प्रति श्री राम की पादुका का पूजन करके उन्हीं से आज्ञा मांगकर राजकाज करते हैं। उनका परम पवित्र आचरण, व्रत और संयम देखकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। अयोध्या कांड के समापन प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत का जन्म यदि न होता तो मुनियों के लिए भी दुष्प्राप्य यज्ञ, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस पाठ। हम आपको याद दिला दें, आज शाम 7:45 पर सुनिए कार्यक्रम अनमोल यादें। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की है।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओ नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हम संगीत सरिता की इस तीसरी कड़ी में फिर उपस्थित हैं और पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार जी, नमस्कार। रोनू दा, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे शुरुआत की बांसुरी की और अपने गुरु जी के बारे में बताइए, तालीम के बारे में।
2: हाँ, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पावे, गुरु इति ज्ञान। तो ये एक बड़ी अजीब सी शुरुआत है। मैं बचपन में वैसे तो बहुत शांत था, माता जी बोलती थी कि सबसे शांत भाइयों में यही था, मगर एक गलती मुझसे ऐसी हो गई
1: जी,
2: वहीं से मैं बांसुरी बजाने लगा। वाराणसी में मेरा जन्म हुआ
1: जी
2: 1963 में। तो जब मैं 6 साल का था तो हम लोग सारनाथ करके एक जगह है, वहां पे भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ है
1: जी,
2: और बड़ी आध्यात्मिक जगह है। वहां पे पिताजी पन्नालाल घोष जी के शागिर्द थे
1: जी,
2: और पन्ना बाबू की उन्होंने सेवा भी बहुत की, और पिताजी बहुत बड़े पेंटर थे मगर शौकिया बांसुरी बजाते थे, और होम्योपैथिक डॉक्टर भी बहुत बड़े थे।
1: अच्छा
2: जी। तो वो जो बांसुरियां हम लोग अभी बहुत संभाल के रखते थे, उस जमाने में कोई बस खाट पे पड़े हुए थे, तो मैंने 5-6 बांसुरियां, कोई खिलौना तो था नहीं मेरे पास, तो बांसुरियों से खेलते खेलते मैंने 5-6 बांसुरियां तोड़ डाली बस। तो शाम को आके लाल पीले हो गए एकदम वो। मैंने सोचा आज मेरी खैर नहीं, तेरी मार मुझे पड़ेगी आज की। मैं तैयार हो गया सजा पाने के लिए, मगर कोई सजा उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, जितनी बांसुरियां तुमने तोड़ी है उतने ही घंटे रोज रियाज करना पड़ेगा,
1: अरे
2: यही तुम्हारी सजा है। और मैं था बड़ा ईमानदार बचपन से, मैं झूठ कभी नहीं बोलता था, अभी भी नहीं बोलता हूँ अगर मजबूरी ना हो तो। कहते हैं ना, सच बोलो भाई, सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलो, एक झूठ के लिए यहाँ 100 झूठ बोलना पड़ता है।
1: सही बात है।
2: सच बोलो भाई, सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलो। तो ये लाइनें मैंने लिखी हैं, मैं कविता भी लिखता हूँ। तो वो जो मैं पिताजी से सीखने लगा और 6-6 घंटे रियाज करने लगा, तो मैं बांसुरी वादक ही बन गया। उसके बाद 1973 में हम लोग बंबई आ गए। बंबई आने का कारण कुछ बनारस छोड़ना था ऐसा नहीं, होम्योपैथिक का इतना डिमांड बनारस में था नहीं। तो यहाँ डॉक्टर मुखर्जी थे
1: जी,
2: वो पिताजी के दोस्त थे, तो उन्होंने बंबई बुलवा लिया। बंबई आने के बाद हम लोग ऐसे आदमी से मिले जो कोई सोच नहीं सकता कि मैं उनको मिला हूं। मेरे उम्र के शायद ही कोई होंगे जो उनसे मिले होंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु को भी कई मतलब 30-35 साल हो गए
1: जी।
2: उस्ताद नसीर अहमद खान साहब, तान सम्राट। अब वो तान सम्राट कोई पद्मश्री पद्मभूषण नहीं है, तान सम्राट ऐसा कोई टाइटल नहीं है कि इनको भी दे दिया, उनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया। सारे उस्ताद चौबारे में बैठते थे और उनकी महफिल लगती थी, उसमें एक एक करके सब गाते थे और उसके बाद एक दूसरे को एक एक नाम देते थे। अरे ये तो धीरधर का बादशाह है, अरे इसके तो खटके का जवाब नहीं, अरे इसके तो सा लगाने का अंदाज अलग है। तो उस्ताद नसीर अहमद खान साहब तान जब गाए तो सारे अमीर खान साहब और ये लोग सब मिलके बोले, अरे ये तो तान का सम्राट है ये।
1: गजब।
2: तो तान सम्राट से मैं मिला। आप सोचिए 74 में 11 साल की मेरी उम्र, और उनकी बंदिश 8 तक मुझे याद है
1: जी,
2: जिसको राशिद भाई भी गाते थे
1: जी।
2: मगर जो आज भी यूट्यूब में है, कोई सुने तो बोले कि ऐसा नहीं गाया कोई
1: जी,
2: कौन की थोड़ी पार करो तुम अब मोरी नैया, हजरत निजामुद्दीन औलिया।
1: तो यहाँ पर सुनाएंगे क्या थोड़ी?
2: मैं जरूर सुनाऊंगा
1: जी।

मैंने इसमें किया है। खान साहब गाते थे खाली से शुरू करते थे, मैं पार उसको मैं सम से लेता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे उसमें सम दिखता है। तो मेरी जो रिकॉर्डिंग मियां की तोड़ी की सीडी है उसमें मैंने सम से लिया है।

0: तो गंज शखर के लाड लड़ैया में उन्होंने जो एक तान ली, तब से मुझे तीन प्रकार के तान वो गाते थे, वो जो मुझे याद है, एक तलवार कट तान, एक जिलेबी तान जिसमें बहुत हसीन थे देखने में
1: जी।
0: उनकी तस्वीर भी पिताजी ने बनाई, क्योंकि पिताजी ने कहा कि इतना सुंदर गायक मैंने तो नहीं देखा
1: जी जी।
0: और मोटे फ्रेम का चश्मा पहनते थे
1: जी।
0: लता जी ने उनका गाना सुनना चाहती थी, तो लता जी ने उस जमाने में 500 रुपए एडवांस दिए थे। वो एडवांस लेके खान साहब चले गए दिल्ली।
1: अच्छा,
0: प्रोग्राम गाया ही नहीं।
1: अच्छा।
0: और पिताजी से कहा कि वहां पे किसी का डेथ हो गया है।
1: हाँ।
0: आप, मैं जा रहा हूं, मैं गाऊंगा नहीं।
1: हाँ हाँ।
0: आप अपने बच्चों को लेके लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले के वहां चले जाइए, उनके जैसा गुनी कोई नहीं है आज।
1: जी जी।
0: मैं भी नहीं, मैं तो गा लेता हूँ।
1: हाँ।
0: वो जानते भी है। लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी के वहां हम लोग बाबा भगवान दास जी के आश्रम में माटुंगा में, उन बाबा के वहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई जात पात का कोई
1: भेद नहीं,
0: कोई भेद ही नहीं,
1: बिल्कुल।
0: बस संगीत ही संगीत उनको अच्छा लगता था। लक्ष्मण प्रसाद जी हमारे हिंदुओं में जो वानप्रस्थ आश्रम होता है, पहले बाल आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम जिसको, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर सन्यास
1: जी।
0: ये चार आश्रम बताए गए, मतलब चार जीवन के चार पहलू
1: जी।
0: तो वानप्रस्थ उन्होंने ले लिया था, घर में नहीं रहते थे, वही बाबा के वहां रहते थे।
1: अच्छा।
0: वहां जाके उनके दर्शन किए, मेरी दीदी उनसे गाना सीखने लगी, मैं भी गाना सीखने लगा। मगर जब भी कोई बंदिश वो मुझे बताए, मैं उस बंदिश को गाता भी था और बांसुरी में और अच्छा मैं उसको निकालता था। एक दिन वो पिताजी से बोले कि भानु दादा, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी हैंडराइटिंग देख के लगता है कि इसको फ्रेम में करके दीवार में रख के। तो पिताजी को बोले कि आपका बेटा गाता तो ठीक ठाक है, मगर ये बांसुरी वादक बनेगा। तो पिताजी बोले किसके पास ले जाना चाहिए। तो उस जमाने में हरिजी का इतना नाम नहीं हुआ था। 1976 में मैं 13 साल का हो गया। बोले यहीं पे सायन में फिल्म डिवीजन में काम करते हैं पंडित विजय राघव राव, उनसे गुणी बांसुरी वादक कोई नहीं है। गुरु बहुत फेमस होने की जरूरत नहीं है, गुरु ज्ञानी होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: वहां पे मैं चला गया और बांसुरी की शिक्षा मेरी होने लगी। वो भी पन्नालाल घोष जी को देख के ही बांसुरी शुरू किए थे।
1: जी जी।
0: तो तीव्र मध्यम के लिए छोटी उंगली की इस्तेमाल वो भी आवश्यकता वो करते थे। जो हरि जी का टेक्निक है वो तो भोलानाथ जी वाला टेक्निक है, तो उसमें छोटी उंगली की इस्तेमाल नहीं है, वो शहनाई वाली टेक्निक है।
1: जी जी।
0: और ये जो मैं बजाता हूँ ये पन्नालाल घोष वाली टेक्निक है।
1: जी।
0: मेरे गुरु जी ने एक दिन रात नहीं जा रहे थे, घर से निकाल दिया मुझे।
1: अच्छा।
0: बोले अभी ये बजेगा तो ही आना। और मैंने 40 दिन का चिल्ला किया, बस 40 दिन एक ही आसन में बैठ के 4 घंटे रोज, जिसको 40 का चिल्ला कहते हैं, वो चिल्ला मारा मैंने। अंगुलियां फूल जाती थी तीव्र मध्यम सानी दा मावदानी मैं बजा के सुना रहा हूं।
1: जी, जी, जी।
0: आपको लगेगा कि ये जो कई लोग प्यार से इसको कहानी उंगली भी कहते हैं, उसका स्पीड आप तर्जनी जो है हमारा और मध्यमा जो है उतना स्पीड आपको उसमें दिखाई पड़ेगा।
1: जी जी।
0: देखिए
1: सुनाए सर।
0: सानी दा पामा मामे कानी उंगली से बजा रहा हूं, तो उसका स्पीड देखिए।

0: अगर आप छोटी उंगली कानी उंगली का इस्तेमाल लिटिल फिंगर का नहीं कर रहे तो कैसे बजेगा? मैं तो लिमिटेशन मानता हूँ इसको।
1: जी जी जी,
0: जो इसका इस्तेमाल नहीं करते उनके वादन में कुछ ना कुछ लिमिटेशन है।
1: तो ये जो आपने बजा के दिखाया, अपने श्रोताओं को बता दें कि ये जो बारीकियां पंडित जी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं आंखों से, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो सचमुच ये बाकायदा कहीं अंकित करने लायक है।
0: मैं गुरु के बारे में एक बात और कहूं
1: जी।
0: मेरे गुरु जी इतने महान थे, मगर वो पहले थे कर्नाटिक म्यूजिशियन
1: जी,
0: कर्नाटिक फ्लूट बजाते थे और डांसर थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ, तो उन्होंने जो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक सीखा वो पंडित रविशंकर जी से सीखा।
1: अच्छा।
0: हालांकि रविशंकर जी का उनकी उम्र में सिर्फ 5 साल का ही फर्क था। 2011 में मेरे गुरुजी गुजर गए, 2012 में रविशंकर जी गुजर गए। रविशंकर जी बड़े गुरुजी मैं बोलता हूं, वो जब मेरे गुरुजी से पूछे कि मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा हूं एशियाड के लिए, इंदिरा गांधी जी के कहने में अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, इसमें मेरी बांसुरी बजी हुई है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो मेरे गुरुजी ने कहा कि मेरा एक शागिर्द है, वो मुझे रानिंद्रपुरा नाम से बोलते थे और रानू बोलते थे।
1: जी जी।
0: उसका दिमाग बड़ा तेज है, उसको ले लीजिए आप इसमें। तो मैं उस गाने में जब बजाया तो मैं ना नोटेशन बहुत फास्ट लिखता था बचपन से, एकदम स्टेनो की तरह, स्टेनोग्राफर जैसे होते हैं।
1: जी जी।
0: तो वो बोले कि विजय, मेरे गुरुजी का नाम लेकर बोले, सॉरी मैं ऐसे नाम ले रहा हूं, ये लड़का मुझे दे दो।
1: अरे गजब।
0: ये लड़का आप मुझे दे दो।
1: हाँ हाँ।
0: तो गुरुजी बोले आपका ही है, बोले इसको दिल्ली भेजो। उदय शंकर जी जो रविशंकर जी के बड़े भाई थे,
1: जी जी,
0: उनके ऊपर मैं एक फेस्टिवल कर रहा, उदय उत्सव। उदय उत्सव में मैं बजाने चला गया। तब से पंडित रविशंकर जी के जितने एल्बम हुए सब मैंने बजाया। फिर उनसे डायरेक्ट भी मैंने कुछ राग सीखे, जैसे परमेश्वरी, तिलक श्याम और राग रसिया
1: जी।
0: मतलब यहां तक कि नट भैरव में क्या सोचना चाहिए, नट भैरव कई लोगों को मालूम भी नहीं कि ये रविशंकर जी का बनाया हुआ राग है। ये साउथ का एक राग है, सरसांगी।
1: जी जी, जी।
0: नट भैरव ही है वो
1: जी।
0: उसको रूप दे दिया रवि गुरु जी ने कि ये सादा ने सरे रे गामा रे, यहाँ नट है ना
1: जी जी,
0: सरे रे गा गामा पा रे, रे गामा पा गामा रे नी रे नी दा, सा को छोड़ के नी सर ने ने, मैं बजा के दिखा रहा हूँ, देखिए कैसी बात है। ये नट भैरव है।
1: वाह पंडित जी, अब घड़ी की ओर देख रहे हैं कि समय समाप्त हो रहा है, तो आज की इस कड़ी को यहीं समेट रहे हैं। अनुमति लेते हैं श्रोताओं से, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओ, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

0: हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अनमोल यादें। इस कार्यक्रम में सुनिए फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रेकर की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की है। ये विविध भारती है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड।

0: यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती,
1: बीकू वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: मूल्य बिस्तर गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद का संगीत।

मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपने अभी सुना। आज जाने माने अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि है। अपने खास अंदाज के लिए मशहूर राजकुमार जी की तमाम फिल्में हैं जिन्हें हम बड़े ही चाव से देखते हैं। आइए अब सुनते हैं ये गाना फिल्म नौशेरवान आदिल से।

0: जाते।
1: 1957 में रिलीज हुई फिल्म नौशेरवानिया दिल, जिसमें सोहराब मोदी के साथ अभिनेता राजकुमार और माला सिन्हा नजर आए, बहुत मशहूर फिल्म। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पंचायत का ये गाना।

0: फिल्म पंचायत का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शकील नोमानी का कलाम था और इकबाल कुरैशी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम भूले बिसरे गीत जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

पूरा हुआ अंतराल भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मन्ना डे और साथियों के स्वरों में पैगाम फिल्म का ये गाना, प्रदीप के बोल हैं सी रामचंद्र का संगीत।

मूल्य मिश्र गीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं 1961 में रिलीज हुई फिल्म घराना का ये गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत।

आइए अब सुनते हैं फिल्म अर्धांगिनी का गाना। 1959 में रिलीज हुई इस फिल्म में अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ राजकुमार कैप्टन यानी पायलट की भूमिका में नजर आए थे। और इस गीत को जो आप सुनवा रहे हैं, ये लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत वसंत देसाई का है।

0: लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे थे उजाला फिल्म का ये गाना। हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन की धुन। इस गीत के साथ ही अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुनिए हमेरा ही प्यार के।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से

आपने सुना लाल पत्थर फिल्म का ये गाना आशा भोसले और मन्ना डे के स्वरों में नीरज के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। आज सुप्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि है। अपनी विशिष्ट शैली में बोले गए संवादों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले राजकुमार साहब को याद कर रहे हैं उनकी फिल्मों के कुछ गीतों के साथ आज के इस कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं फिल्म हीर रांझा का ये गाना।

0: अंधेरे का इशारा समझो, दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

महाराणा हीर रांझा के ये सभी संवाद काव्यात्मक शैली में लिखे गए थे। 1970 में आई थी ये फिल्म और उन्हें अपने खास अंदाज में बोला रांझा बने सजीले बाने में सजे राजकुमार ने। इस फिल्म में उनके साथ ही प्रिया राजवंश। आइए अब सुनते हैं फिल्म दिलीप मंदिर का ये गाना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: फिल्म बाकीजा का ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। कैफ भोपाली का कलाम था और गुलाम मोहम्मद का संगीत था।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारा ही प्यार के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म वक्त का ये गाना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया हुआ। साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है रवि ने।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वरों में आप सुन रहे थे फिल्म हमराही का ये गाना। गीत लिखा था शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत के साथ ही अब आज का हमराही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को ही कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने

0: आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज

0: जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
1: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात

0: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई की अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
3: वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 35वीं कड़ी।

0: राष्ट्र ध्वज आज हमारा राष्ट्रीय सम्मान बिंदु है। भारतीय संस्कृति में भी ध्वज का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय युद्धों में अग्रभाग में रहने वाले ध्वज की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक संभाल कर रखा गया है। रामायण महाभारत काल में प्रमुख योद्धाओं के अपने अपने अलग अलग ध्वज होते थे। इतिहास काल में महाराणा प्रताप का चांगी नामक सूर्य के चित्र वाला ध्वज प्रसिद्ध था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक था। आगे चलकर पेशवाओं के काल में यह ध्वज उत्तर में अटक तक फहराया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई भले ही प्रत्यक्ष रणभूमि पर आमने सामने की न रही हो, फिर भी अंग्रेजों के यूनियन जैक को चुनौती देने के लिए ऐसे एक ध्वज की आवश्यकता थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय भारत का अपना एक स्वतंत्र पहचान वाला राष्ट्र ध्वज हो, यह सोच सन 1900 के बाद सामने आई।
1: 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में भारत का विशेष रूप से तैयार किया गया पहला ध्वज भगिनी निवेदिता ने प्रदर्शित किया था। उस पर वंदे मातरम शब्द बांग्ला लिपि में लिखे हुए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो पहली बड़ी सभा हुई थी, उस सभा को एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फिर से 7 अगस्त 1906 को एक सभा आयोजित की गई थी। कलकत्ता के पारसी बाग में हुई उस सभा में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के हाथों वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज फहराया गया। ये ध्वज कृष्ण कुमार मित्र, उनके दामाद सचिंद्रनाथ बोस, पुत्र सुकुमार मित्र, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त की कल्पना से तैयार हुआ था। ऊपर की हरी पट्टी पर खिलते हुए 8 कमल थे और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर चांद सूरज अंकित थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम शब्द लिखे थे।
0: बाद के विभिन्न विरोधी आंदोलनों की अनेक सभाओं में यह ध्वज फहराया गया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होने तक यह वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज लगातार उपयोग में लाया जाता रहा। इसे ही भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के आधुनिक कालखंड में फहराया गया आद्य राष्ट्र ध्वज माना जाता है। इस ध्वज का प्रभाव देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के मन पर भी पड़ा था। इस ध्वज से प्रेरणा लेकर उन्हें विदेश में भी अपना ध्वज फहराने की प्रबल इच्छा हुई होगी।
1: इसके ठीक एक वर्ष बाद 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की प्रतिनिधि के रूप में फ्रांस से गई मादाम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाली थी, ये निश्चित हो गया था। उसी समय ध्यान में आया कि इस अधिवेशन में प्रदर्शित करने के लिए अपना स्वयं का ध्वज होना चाहिए। लंदन में पढ़ रहे सावरकर, मादाम कामा और सरदार सिंह राणा के बीच चर्चा होने लगी। अन्य देशों के तत्कालीन ध्वजों को देखते हुए अपना ध्वज भी 3 रंगों वाला विशिष्ट होना चाहिए, ऐसी कल्पना साकार हुई। ये ध्वज बनाते समय लंदन में ही पढ़ रहे कलाकार क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानुनगो की सहायता मिली।
0: अगस्त 1907 अधिवेशन का तीसरा दिन। सफेद साड़ी पहने हुए, पारसी पद्धति से सिर पर पल्लू लिए हुए मादाम कामा ने अपने पल्लू के नीचे छिपाया

हुआ वह रंगीन ध्वज अचानक सबके सामने दोनों हाथों से ऊंचा उठा दिया। उस समय पूरे सभागृह में मादाम कामा की शुभ्र मूर्ति के कारण बिजली कौंधने जैसा आभास सारे सभागृह को हुआ। इस रंगीन ध्वज के रंग भी उतने ही तेजस्वी थे। मादाम कामा के सहज तेज

गज की ऊपरी पट्टी हरी थी, उस पर 8 प्रांतों के प्रतीक 8 कमल, बीच का रंग केसरिया और उस केसरिया पृष्ठभूमि पर भारतीय स्वतंत्रता के शब्द रूपी हुंकार वंदे मातरम और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य तो दूसरी ओर चंद्रमा थे। ये तीनों रंग जातियों या धर्मों के रंग नहीं थे, ये भारतीय संस्कृति के रंगों और मानव जीवन के गुणात्मक अर्थ को बताने वाले थे। हरा रंग धैर्य और उत्साह का, केसरिया रंग विजय और वैराग्यपूर्ण जीवन का, तो लाल शक्ति का प्रतीक था। 8 कमल भारत के उस समय के 8 प्रांतों के प्रतीक थे, तो चांद सूरज शीतलता और ऊर्जा

0: मादाम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखते हुए पल्लू में छिपाकर लाया हुआ ध्वज बाहर निकालकर ऊंचा उठाते हुए कहा,
1: दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बिहोल्ड इट इज बॉर्न, इट इज ऑलरेडी सैंक्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ।
2: भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, देखो इसका जन्म हो चुका है, ये पहले ही भारत के शहीदों के रक्त से पवित्र हो चुका है। मैं आप सभी सज्जनों से आह्वान करती हूँ कि उठें और इस ध्वज को सलाम करें। मैं आपके सामने ये छोटा सा भारतीय ध्वज फहराती हूँ मित्रों, और भारतीय राष्ट्र के नाम पर आपसे न्याय के लिए लड़ने का आग्रह करती हूँ। मैं आपके सामने ये भारतीय ध्वज एक बार फहराती हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने जीवन काल में ही भारतीय गणराज्य की स्थापना देखने की पूरी आशा है। इंडिया एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम। वंदे मातरम।

विदेश में भारत का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया गया यह पहला ध्वज था। इस ध्वज पर भी बीच में वंदे मातरम शब्द लिखे थे। अंतरराष्ट्रीय परिषद में इस ध्वज ने खलबली मचा दी। ऐतिहासिक मादाम कामा के ध्वज और इस कलकत्ता ध्वज में समानता है। इस ध्वज का चित्र या प्रतिकृति भारतीय क्रांतिकारियों के माध्यम से विदेश में क्रांतिकारियों तक पहुंची होगी। इन दोनों ध्वजों में महत्वपूर्ण अंतर यह था कि वंदे मातरम शब्द दोनों ध्वजों पर होने के बावजूद कलकत्ता ध्वज पर वे पीले रंग की पृष्ठभूमि पर नीले रंग में थे, जबकि मादाम कामा के ध्वज पर वे सफेद रंग में थे, और वंदे मातरम में म अक्षर हटाकर र अक्षर पर अनुस्वार लगाया गया था। 20वीं सदी के पहले दशक में एक एक वर्ष के अंतराल पर बनाए गए भारत के पहले तीनों ध्वजों पर वंदे मातरम शब्दों को ही अग्रस्थान मिलना यही विशेषता है।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष।

ईसवी कड़ी मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी सहभागी कलाकार नेहा देसाई तकनीकी सहयोग रमेश धकाते प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट

0: आइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: और प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्र लोक।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन

0: में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

द डर्टी पिक्चर इस फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, कमाल खान का गाया हुआ, रजत अरोड़ा के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं माय फ्रेंड पिंटो फिल्म का ये गाना के की आवाज में। लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत अजय अतुल का है।

सुनिधि चौहान और क्लिंटन सरोजो की आवाजों में आपने सुना गुलजार का लिखा यह गीत, विशाल भारद्वाज का संगीत, फिल्म का नाम एक थी डायन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं शफकत अमानत अली और शंकर महादेवन का गाया हुआ ये गाना, फिल्म का नाम कभी अलविदा ना कहना।

0: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।

आइए अब सुनते हैं जब तक है जान फिल्म का गाना नीति मोहन की आवाज में, साथ में है रैप सोफिया अशरफ का, गुलजार के बोल ए आर रहमान का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आइए सुनते हैं जीरो फिल्म का ये गाना, अभय जोधपुरकर का गाया हुआ, इरशाद कामिल के बोल हैं और अजय अतुल का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर का गाया हुआ वजीर फिल्म का ये गाना। गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं और रोचक कोहली का संगीत है।

सबसे भारी यारी जिंदगी से भी प्यारी। अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये गाना जसलीन रॉयल की आवाज में डियर जिंदगी फिल्म से कौसर मुनीम ने लिखा है और अमित त्रिवेदी ने संगीत तैयार किया है।

0: जिंदगी से प्यार है, गीतों में करार है। सुबह भीनी हो जाए, शाम खुलकर मुस्कुराए, इन गीतों के साथ ये कहती है माइक से ऐप तक खींची दोस्ती की डोर। मगर वक्त पर कहाँ चलता है किसी का जोर, ऐसे ये डोर खींचती रहे, एक दूसरे को सुनने सुनाने का एहसास जगा रहे। लव यू जिंदगी, तमाम पलों के साथ शुक्रिया कहते रहे हम और आप। अब दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
4: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
1: आज का अखबार,
3: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम लेकर आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे, अखबारों से ली गई जानकारी साझी करेंगे, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स प्ले करेंगे। तो चलिए अखबारों की खबरों पर नजर दौड़ाएं और सबसे पहले बात करें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की, यानी EPFO के बारे में। सबसे पहले इस प्रोग्राम में आपसे चर्चा करें, इसमें अभी तक कर्मचारी की सैलरी का 12% अंशदान के रूप

में लिया जाता रहा है और इतना ही इसमें अपना हिस्सा यानी योगदान कंपनी को देना होता था जिस कंपनी में कर्मचारी काम करता है। अब नई व्यवस्था में, नए नियमों में बेसिक सैलरी का 12% अंशदान जरूरी नहीं, बस 1,800 रुपये ही देने होंगे। अगर कर्मचारी स्वैच्छिक तौर से अंशदान बढ़ाना चाहे वो उसकी इच्छा है, लेकिन स्वैच्छिक अंशदान पर कंपनी के लिए उसी तरह की शर्तें अनिवार्य नहीं होंगी। ये तो थी खबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की। अब हमारी जो नज़र है, हमारी जो बात है, मौसम पर होती रहती है। मानसून मेहरबान हो गया है और बांधों का पानी, झील का पानी लबालब है। पूरे पंजाब हरियाणा में छाया है मानसून। 6 दिन के लिए बारिश होगी, गरज चमक होगी, तेज हवाएं चलेंगी। उत्तराखंड में ओम पर्वत यात्रा रोकी गई है। केदारनाथ रूट भी बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है। हिमाचल में बाढ़ के कारण जानमाल का नुकसान भी हुआ है। 49 सड़कें बंद हुई हैं, लेकिन श्री अमरनाथ यात्रा का उत्साह चरम पर है। भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पूरा जोश है। हालांकि बारिश ने थोड़ा विघन डाला, लेकिन उमंग जारी है। 4,822 तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना पहलगाम बालटाल बेस कैंप के लिए। उत्साहित अमरनाथ यात्रियों की तस्वीर आज के अखबार में नजर आती है और इसके साथ साथ हम इस यात्रा के बारे में जानकारी आपसे शेयर करना चाहेंगे कि हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ रखा गया है। बालटाल में 30,000 लोग रुक सकेंगे। 57 लंगर हैं। श्राइन बोर्ड ने कई जगह तंबू लगवाए हैं। 800 रुपये तक बेड जो हैं वो मिल जाएंगे। 3,000 लोगों के लिए विशाल यात्री निवास भी तैयार किए गए हैं। संस्थानों ने भी इंतजाम किए हैं। ये बालटाल की हम बात कर रहे हैं जहां 30,000 लोग जो हैं वो रुक पाएंगे और अस्थाई पोस्ट पेड सिम भी खरीद पाएंगे। दोनों बेस जो कैंप्स हैं वहां पर BSNL, जियो और एयरटेल के विशेष काउंटर लगाए गए हैं जहां यात्री अपनी ID दिखाकर यात्रा के लिए उपयोगी अस्थाई पोस्ट पेड सिम जो हैं वो खरीद सकते हैं। रूट पर 100-100 बेड के अस्पताल भी तैयार हैं। दोनों यात्रा मार्गों पर 1,000 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं। 100-100 बेड के अत्याधुनिक अस्थाई अस्पताल बनाए गए हैं। बालटाल में यात्रा करते समय तबीयत अगर बिगड़ती है तो सबसे पहले डोमेल गेट के पास ही मेडिकल एड सेंटर है, फिर रेल पथरी पर इमरजेंसी मेडिकल सहायता केंद्र है, बरारी पर मेडिकल कैंप है और ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, फिर संगम टॉप पर आपातकालीन चिकित्सा केंद्र भी रखा गया है। पहलगाम की बात करें तो नुनवा बेस कैंप पर बड़ा मेडिकल अस्पताल है। चंदनवाड़ी में 100 बिस्तर का मुख्य बेस अस्पताल बनाया गया है। चढ़ाई से पहले यहां जांच करा सकते हैं। पिस्सू टॉप पर भी मेडिकल एड सेंटर है, फिर शेषनाग कैंप में रात्रि विश्राम पड़ाव पर बेस अस्पताल बनाया गया है। तो इस तरह की तमाम सुविधाएं प्रशासन की तरफ से यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई हैं और श्रद्धालुओं में हर साल इस यात्रा के लिए एक अलग ही उत्साह होता है।

आज का अखबार प्रोग्राम में एक बार फिर हम आपके साथ हैं और अब बारी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कारोबार से जुड़ी हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। भारत जापान में 129 समझौते, 12.4 अरब डॉलर का होगा निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची को कहा छोटी बहन। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2-3 महीने में घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एआई फर्जी मिसालों से फैसले देना गलत, ये इंसाफ का दम घोटने जैसा। आंध्र प्रदेश का भोगापुरक एयरपोर्ट तैयार है 290 किलोमीटर घंटे तक के चक्रवात को झेल सकने की क्षमता है इस एयरपोर्ट में। प्रधानमंत्री 25 जुलाई को करेंगे इसका उद्घाटन। केरल सरकार शुरू करेगी अपनी विमान सेवा 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच। लॉन्च होगा देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम 1। राम मंदिर चढ़ावा मामला, चंपत अनिल गोपाल से फिर सवाल जवाब, एसटीआई ने दस्तावेज कब्जे में लिए। 2030 तक पेट्रोल वाहनों की जगह लेगी 35 लाख ईवी, 1 लाख करोड़ घट जाएगा देश का क्रूड आयात बिल। ये कारोबार से जुड़ी खबरें हैं। बाजार में सेंसेक्स दूसरे दिन भी तेजी में, पूंजी 3.32 लाख करोड़ बढ़ी, सोना 3,000 रुपए, चांदी में 16,000 का उछाल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल की नई सरकार के 100 दिन, आंदोलन से जुड़े जेन जी नेता बोले बालेन वादकों से भटके। बालेन सरकार 100 में से 64 वादों पर फेल, जेन जी के मुद्दे भी अधूरे। यूक्रेन में 11 घंटे रूसी हमला, 21 की मौत। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे मुस्तबा खामेनेई सुरक्षा कारणों से पिता के जनाजे में सार्वजनिक रूप से शामिल नहीं होंगे।

और अब चलते हैं खेलों की दुनिया में। विश्व कप फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार 125वें मिनट में हुए गोल से बेल्जियम जीत गया। विंबलडन की बात करें तो मौजूदा चैंपियन स्वियातेक की लगातार 9वीं जीत और अगले 6 महीने में भारत में 11 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट। ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और कारोबार से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब बारी गाने की।

वेलकम बैक दोस्तों, आकाशवाणी चंडीगढ़ से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। इस समय आप हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी ये कार्यक्रम साथ साथ सुन रहे हैं। अब बारी है ओरिजिनल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। सबसे पहले पंजाब की बात करें। पंजाब में 25% तक निर्माण वाली कॉलोनीज होंगी नियमित। नंगल तलवाड़ा और भानुपल्ली बेरी रेलवे लाइनें 2027 तक पूरी होंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसी माह पंजाब आएंगे, सूबे को मिलेगी विकास परियोजनाएं, ये कहा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने।

पंजाब में 619 स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। अमृतसर एयरपोर्ट पर 901 ग्राम सोना जब्त किया गया। पंजाब में मौसम की बात करें तो पंजाब में बारिश हुई है। अगले 6 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। अब चलते हैं हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो बैंक घोटाला जो मामला है उसमें HSPCB का सीनियर अकाउंटेंट परवीन गिरफ्तार किया गया है। उधर रिमांड के दौरान पूर्व IAS प्रदीप कुमार की तबीयत बिगड़ी। हरियाणा में विदेश से ऑनलाइन रजिस्ट्री की तैयारी। 1 महीने पुराने इंतकाल निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा ने हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में की 2 बड़ी घोषणाएं। हरियाणा प्रदेश में अग्निवीर भर्ती की दौड़ 20 जुलाई से 4 चरणों में ये रैली होगी।

और हरियाणा में मानसून के प्रवेश करते ही 18 जिलों में झमाझम बारिश हुई। प्रदेश में सबसे अधिक 56.2 मिलीमीटर बारिश हिसार में रिकॉर्ड की गई। पंजाब हरियाणा के बाद अब चलते हैं हिमाचल की ओर। सुन्नी लुहरी धौला सिद्ध परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। हिमाचल में बाढ़ से 5 लोगों की मौत हो गई है, 49 सड़कें बंद हैं। भरमौर में 24 श्रद्धालुओं को पानी के बहाव से बचाया गया। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
1: वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम आज का अखबार में अब बारी है लोकल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। और आज के स्थानीय समाचार पत्रों में सबसे पहले मौसम की ही बात है, मानसून की ही बात है। चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली में बादल ही छाए, बरसे नहीं, मानसून एक्टिव, तीव्रता कम, 5 जुलाई को पकड़ेगा रफ्तार। प्रधानमंत्री का चंडीगढ़ दौरा, 17 जुलाई के लिए तैयारी कर रहा प्रशासन, PGI, पंजाब यूनिवर्सिटी और कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स की ओपनिंग होनी है, 1,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हैं। SIR की बात करें तो 3 विजिट के बाद बंद घरों पर लग रहे स्टिकर, फॉर्म नहीं लौटाने पर कटेंगे वोट, 20% घरों से वापस नहीं मिले हैं अब तक फॉर्म, 14 जुलाई तक प्रोसेस पूरा करना है।

पीजीआई की तरह जीएमसीएच 32 में मरीजों के सारथी बने युवा हर कदम पर दे रहे हैं सहारा। 3 मई को एनएसएस सेल के सहयोग से प्रोजेक्ट सारथी की शुरुआत की गई, जिसमें मरीजों और उनके तीमारदारों की निशुल्क मदद की जाती है। प्रशासक ने थपथपाई इन स्वयंसेवकों की पीठ, बोले मरीजों को सही मार्गदर्शन एक बड़ी सेवा। पंचकूला से जुड़ी खबर है। पंचकूला में 300 करोड़ रुपए के कथित स्वास्थ्य घोटाले की जांच तेज, 9 कर्मचारियों से पूछताछ।

0: और दोस्तों, मानसून की शुरुआत के साथ साथ वन महोत्सव की शुरुआत हो गई है, पहली जुलाई से हो जाती है। तो ऐसे में 10:05 पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो इसी मौसम से जुड़ा हुआ है। तो आपने अपने विचार साझे करने हैं जिस टॉपिक के लिए, वो है कि वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने के अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: यह आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:00 को हैं कुछ ही पलों में समाचार, हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के लिए विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति

0: प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुस्तफा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: बिहारा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़
3: हेलो
4: हेलो
3: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी हेलो चंडीगढ़
4: हेलो चंडीगढ़।

नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लाइफ ऑन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूं, आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 11 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे। आपको मालूम ही है किसी एक टॉपिक पर आपसे हम बातें साझी करेंगे, आपके विचार जानेंगे। आज चूंकि मानसून का महीना शुरू हो चुका है, विधिवत रूप से मानसून जो है वो पहुंच गया है। कहीं रफ्तार तेज़ है तो कहीं कम है, लेकिन आने वाले 6 दिनों के लिए मौसम विभाग का ये कहना है कि झमाझम गरज चमक के साथ बारिश होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, कुल मिलाकर ऐसा मौसम रहेगा। और इस महीने में दोस्तों आपको मालूम है कि वन महोत्सव भी आता है। 1 जुलाई से ये प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाता है और इस महीने की सबसे ख़ास बात ये होती है कि पानी भरपूर मात्रा में मिलता है, मिट्टी नरम होती है और मिट्टी में कुछ लगाना हो तो बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। इसीलिए इस महीने वन महोत्सव को चुना जाता है।

0: ताकि साल भर के लिए हम तैयारी करें अपनी धरती माँ को हरा भरा बनाने के लिए, जहाँ जहाँ साल भर हमने ये सोचा है कि इस मानसून में, बारिशों के मौसम में पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, तो ये उपयुक्त समय आ गया है। तो ऐसे मौसम में हमने भी टॉपिक चुना है कि वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ। तो पर्यावरण बचाने के लिए, उसको हरा भरा बनाने के लिए ये एक हरा भरा मौका है मानसून का। तो चलिए आज इसी विषय पर आपसे कुछ बातें साझी हो जाएं। तो ऐसे मौसम में आपने अपने स्कूल कॉलेज में या अभी भी किसी न किसी संस्था से जुड़ के इस महोत्सव को मनाया होगा, अपने हाथों से पौधा लगाया होगा। आज जब उस पौधे को आप देखते हैं, जब वो पेड़ बन गया है, तो आपको कैसा महसूस होता है? इन तमाम बातों को लेकर आज इस प्रोग्राम में बातें होंगी। और पर्यावरण हम किस तरह से एक पेड़ लगाने से बचा सकते हैं, वो आप हमें बताएंगे। प्रधानमंत्री जी ने अभियान शुरू किया था एक पेड़ माँ के नाम, जिसे पूरी दुनिया में साथ मिला और हर कोई इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपने हाथ से एक पेड़ या पौधा ज़रूर लगाता है। तो चलिए इस प्रोग्राम में वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, इस मुद्दे पर हो जाएं बातें। और बातें करने के लिए फ़ोन आपको मिलाना होगा, नंबर्स आपको मिलाने होंगे 2660615, 2660617 और 2660619। ये तीन नंबर्स हैं, इनमें से किसी एक को मिलाना है और अपने विचार साझे कर लेना है। तो आपका ही इंतज़ार था, अब हमारे पास तीनों नंबर्स पर जो हैं कॉल्स आ चुकी हैं, लेकिन बारी बारी से होगी सबसे बात। हेलो चंडीगढ़
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, वेलकम, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: मैं सतपाल सिंह बिंद्रा, सेक्टर 21 चंडीगढ़ से।
0: जी वेलकम जी आपका। बिंद्रा जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: सब बढ़िया सर, सब बढ़िया।
0: मुझे लगता है कि पेड़ लगाने में और पर्यावरण बचाने में आप सबसे आगे हैं आज के इस प्रोग्राम में।
1: जी
0: ये आज आपकी पहली कॉल है बिंद्रा जी।
1: थैंक यू सर, थैंक यू, आपने रिसीव कर लिया हमारी कॉल को।
0: अरे रिसीव क्यों नहीं करना, रिसीव नहीं करेंगे तो प्रोग्राम करने का क्या फायदा?
1: जी जी,
0: क्योंकि ये प्रोग्राम तो आप जैसे हमारे जो श्रोता हैं, तमाम सुनने वाले हैं, उनसे सजता है
1: जी।
0: और हम आज इसी बात से एक और बात कह दें कि जो हमारे श्रोता इस प्रोग्राम को तो सुनते हैं लेकिन कभी फोन नहीं किया या समय नहीं मिला, तो आज कोशिश कीजिए मिलाने की।
1: राइट।
0: अब कहिए आप अपनी बात बिंद्रा जी।
1: ऐसे सर, हम भाग्यशाली हैं जो चंडीगढ़ शहर में रहते हैं, जहाँ ग्रीनरी का खास ख्याल रखा गया है
0: जी।
1: जहाँ तक मुझे पता है करीब 55-56% ग्रीनरी की व्यवस्था है चंडीगढ़
0: जी।
1: तो इससे क्या होता है, वातावरण जो उसमें काफी फर्क पड़ता है और हम एक कृत्रिम जो भगवान ने सिस्टम बनाया हुआ है उसका भरपूर आनंद ले पाते हैं
0: जी।
1: तो हर नागरिक का यह कर्तव्य है, जहां जहां भी आपको, आप इंडिपेंडेंट कोठी में रहते हैं वहां पेड़ लगाएं, आसपास कोई खुली जगह है वहां आप पेड़ लगा दें, तो ये हरियाली बढ़ेगी और हमारा वातावरण जो है शुद्ध होगा, हमें शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी
0: जी।
1: तो ऐसा है, एक मैंने न्यूज पढ़ी थी कि चंडीगढ़ में कोई रोडवेज के कंडक्टर है
0: जी,
1: वो अपने जीवन काल में उन्होंने मेरे ख्याल हजारों वृक्ष लगाए हैं
0: जी। बहुत अच्छी बात
1: है। लेकर सब जगह जहां उनको मौका मिलता है वो पौधारोपण करते हैं
0: जी।
1: तो ऐसे लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए और वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहयोग करना चाहिए।
0: बिंद्र जी देखिए, तभी तो ये वन महोत्सव जो मनाया जाता है मानसून के आने पर, तो इसका बनाने का उद्देश्य यही है।

0: कि मिट्टी नरम होती है, पानी की भरपूर मात्रा होती है, ऐसे में आप आराम से मिट्टी को खोद कर एक पौधा, एक पेड़ धरती माँ के नाम लगा सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने तो नारा ही दिया है कि एक वृक्ष अपने माँ के नाम जरूर लगाएं, जिससे माँ की याद भी बनी रहेगी और वातावरण भी शुद्ध होगा।
0: देखिए, माँ की सेहत भी बरकरार रखनी चाहिए ना।
1: जी जी जी,
0: क्योंकि माँ ने सबको पालना है,
1: अपनी करनी चाहिए,
0: अपनी ममता की छाओं में, अपनी हरियाली की छाओं में रखना है
1: जी।
0: तो उसकी सेहत भी बनी रहनी चाहिए, हरी भरी रहनी चाहिए
1: जी।
0: तो बिंद्रा जी,
1: तो
0: आपका
1: जी, धरती ही हमारी माँ है और हम माँ का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा।
0: बिल्कुल। तो बिंद्रा जी, आपका धन्यवाद करें प्रोग्राम में अब बात करने के लिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: हेलो चंडीगढ़, कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई से।
0: वाह राकेश जी, क्या बात है कमाल ही कर देते हैं आप तो।
2: जी जी जी, आज तो मैं जल्दी जल्दी कॉल लगा दिया क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर में नजीबे बात भी जो नए हो सकता हूँ, अभी ऐसा टॉपिक हो जाए तो जो नया अवसर मिल जाएगा, तो मैं सोचा की आपसे बात निपटा लूँ तो फिर और चैनल पे भी जाना है मुझे।
0: नहीं, अभी अभी अभी कहाँ कहाँ होकर आए हैं?
2: अभी तो मैंने धर्मशाला पे लगाया था और धर्मशाला से अब मैं आपके पास आया, उससे पहले मैंने अगरतला लगाया था और
0: अच्छा,
2: सिलीगुड़ी पे लगाया था
0: जी,
2: तो अब आपके पास आ गया, उसके बाद फिर नजीबाबाद पे ट्राई करेंगे।
0: तो धर्मशाला वाले क्या कहते हैं?
2: धर्मशाला वाले कहते हैं कि हमें किस तरह से जो है पर्यावरण को बचाना चाहिए, तो पर्यावरण के ऊपर था।
0: अच्छा हाँ, वही बात हो गई ना कि मानसून का मौसम है, बारिशों का मौसम है, इस मौसम का पूरा पूरा भरपूर फायदा उठाना चाहिए।
2: जी जी जी जी जी, हाँ। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमारा भी टॉपिक तो यही है कि वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका टॉपिक ये है, तो मैं इस टॉपिक पे ये कहना चाहता हूँ कि वृक्ष लगाओ, पर्यावरण को बचाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें वृक्ष लगाना चाहिए और खास कर हिमाचल पहाड़ी राज्य में तो वृक्ष तो लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है पर्यावरण का जो है नुकसान जो है यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जब हिमाचल में जब मानसून आता तो यहाँ तो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड यहाँ ही होती है, तो हमें धरती को ऑक्सीजन अगर हमने देना तो वृक्ष को हमें लगाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम एप्पल के जो सेब के पेड़ लगाए, जैसे कि देवदार की जो लकड़ी होती है, मतलब कोई भी जो है पेड़ होता है हमें लगाना चाहिए ताकि हम अपनी धरती को सुरक्षित रख सके।
0: और हिमाचल में तो पेड़ों की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि पहाड़ी इलाकों में जहाँ जहाँ पेड़ हैं उनको उसी भाव के साथ जो है संरक्षित किया जाए।
2: जी जी जी जी।
0: तो आपके गांव में किस तरह से हरियाली है?
2: हमारे तरह हमारे गांव में तो कहीं कहीं पे जो है चील होती है, जो देवदार की जो है पेड़ होते हैं हम लगाए हैं, और अभी कहीं कहीं जो है महिला मंडल द्वारा युवा क्लब के द्वारा भी जो है पेड़ लगाए जा रहे हैं हमारे क्षेत्र में, कुछ गांव में
0: जी। और आपके गांव का नाम क्या है?
2: मेरा गांव का नाम है गुंडा।
0: कुंता?
2: गुंडा गुंडा
0: गुंडा। अच्छा अच्छा,
2: हाँ जी। और मेरा जो स्थानीय जबरोग है और मेरा जो प्रकृति नगर है इंजीनियर कॉलेज, उसके साथ आस पास पता है गुमा क्षेत्र में।
0: बहुत अच्छी बात है राकेश जी, बहुत अच्छी जगह पर रहते हैं आप।
2: जी जी जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो हरियाली हरियाली है, और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो अभी मैं बाहर आया तो ठंडी ठंडी जो है हवा मेरे घर के आसपास चल रही है।
0: बस बहुत ही प्यारी जो है बयार बहती है यहाँ, और उसी के लिए हर कोई खींचा चला आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
2: जी

तो दोस्तों, वाकई जीवन की हर खुशी हमारे पर्यावरण की बहार से है, और ये बहार बरकरार रखने के लिए हमें इस मौसम का, वन महोत्सव के इस समय का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वातावरण पूरी तरह से अनुकूल है पेड़ पौधे लगाने के लिए। हमारा आज का टॉपिक है वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ।

0: वेलकम बैक दोस्तों, हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी।
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: जी मैं अशोक बोल रहा हूँ, सेक्टर 42 42 से।
0: जी अशोक जी फरमाइए।
1: आपका टॉपिक बहुत अच्छा है
0: जी।
1: क्या कभी आपने अपने घर में या संस्थान में कोई पेड़ वगैरह लगाया है?
0: हाँ हमारे हाँ। तो बहुत सारे पेड़ है।
1: हाँ लगाए हैं जी, पेड़ लगाए हैं, स्कूल में लगाए हैं, आज भी वो स्टैंड है।
0: अच्छा मैंने सोचा आप हमें पूछ रहे हैं कि अपना बता रहे हैं।
1: सेक्टर 11 में लगाए पेड़ हमने।
0: अच्छा सही बात है जी, ठीक है जी।
1: स्कूल में,
0: स्कूल में
1: उसके बाद घर में भी आम की गुठली को दबा देते थे, वो पेड़ बन जाता था
0: जी।
1: हमारे घर में 10-12 पेड़ थे, बहुत बड़ी कोठी थी, उसमें आड़ू का और केले का, अंजीर का, अमरूद का और जामुन, बहुत पेड़ थे, इनमें से हमने भी लगाए पेड़।
0: जी जी जी जी
1: हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक आपका है, पेड़ लगाने चाहिए।
0: हाँ इस मौसम में
1: मिले वहाँ लगा दीजिए।
0: हाँ इस मौसम में आपको वो बातें याद आ जाती।
1: हाँ जी याद आती हैं, कोठी तो खैर छूट गई लेकिन आप भी जाते हैं ना, दिल करता है पेड़ों को जफी पा के मिले।
0: हाँ
1: मतलब यादें जुड़ी हुई हैं
0: जी जी।
1: इंजीनियरिंग कॉलेज से हमारी
0: जी,
1: कचनार का पेड़, बहुत सारे पेड़, टाली हमारे हमारे मित्र है
0: जी।
1: हाँ बहुत अच्छा लगता है उनको मिलके, पेड़ों से भी हम बातें करते हैं कभी।
0: जी बिल्कुल सही है। हाँ, जीवन की जो
1: दुकान होता है ना, खुली जगह होती है, वहाँ पे पेड़ पूड़ लगाते हैं, जब वापस जाते हैं मिलने तो अच्छा लगता है, भी हमने ये पेड़ों के फल खाए हैं और पानी दिया है।
0: अभी अशोक जी आप 42 में रहते हैं?
1: जी हाँ, अब तो खैर स्टाफ क्वार्टर छोड़ के अब तो अपने कोठी में आ गए।
0: तो आपके यहाँ घर आंगन में किस तरह का माहौल है पेड़ पौधों को लेकर, या जितनी भी जगह होगी आपके पास?
1: हमारे आंगन घर के पास ग्राउंड बना हुआ है
0: जी,
1: वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं और टाइम टू टाइम ये इसका कटिंग वगैरह करके सरकारी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले हैं वो उसकी अच्छी देखभाल करते हैं।
0: और आपके ही सेक्टर में कुछ जगह शायद कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जो चंडीगढ़ की विरासत भी माने जाते हैं?
1: हाँ है, एक दो ये माड़ी है वहां पे बहुत पुराना पेड़ है और
0: यहाँ 42 में जो कॉलेज है शायद
1: वहां पे सुना है मैंने, अंदर हाँ, तो नहीं गए मैं, नहीं, नहीं, वहां बहुत पुराना पेड़ है।
0: उस कॉलेज के बाहर सड़क के ऊपर लगे हैं पेड़, बहुत पुराने हैं।
1: हाँ बहुत पुराने हैं
0: वो, मुझे हाँ मुझे जहां तक याद आ रहा है
1: जी
0: जी,
1: ये एस्कोन मंदिर है
0: जी,
1: वहां पे भी बहुत पुराना पेड़ है, 100 साल पुराना।
0: जी जी जी जी
1: बहुत तो, पुराना, उस पे लिखा हुआ है बोर्ड पे ये 100 साल पुराना पेड़ है
0: जी।
1: पेड़ों से जो प्यार करते हैं वो इस चीज की फोटोग्राफ बना के व्हाट्सएप पे भी डालते हैं, देखिए इतना पुराना पेड़ है, हमें पेड़ और ज्यादा उगाने चाहिए
0: जी। और सेक्टर 42 की जो हम बात कर रहे थे, अब मुझे लगता है यहाँ होटल मैनेजमेंट का संस्थान है, उसके बाहर की बात है शायद ये।
1: हाँ पेड़ कुछ पेड़ तो ना ये एजुकेशन संस्थान के अंदर आ गए
0: जी, कुछ बाहर भी
1: वो आज भी कायम है।
0: हाँ हाँ
1: ये आज भी कायम है, ऐसे ही एस्कॉन मंदिर में भी एक पेड़, बहुत पुराना पेड़ है, 100 साल पुराना।
0: जी जी जी, जी।
1: पेड़ों से हमें मतलब जुड़े रहने चाहिए
0: जी। बिल्कुल सही अशोक जी, आपने इस प्रोग्राम में बात की और हमेशा अपने उन दिनों को याद किया जब अपने हाथों से आपने पेड़ लगाए,
1: बचपन में यादें ताजा हो जाती हैं जी सारी।
0: तो अच्छा आज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के लिए वक्त मिलता है, कभी उन पेड़ों को देखते हैं, निहारते हैं कभी?
1: मैं तो जी जब भी 11 सेक्टर साइड जाता हूँ, पीजे साइड जाता हूँ, मैं अपने घर होके जाता हूँ।
0: अच्छा,
1: यादें जुड़ी हुई हैं, उन यादों को ताजा कर लिया करते हैं।
0: तो पेड़ वहाँ लगे हुए?
1: हाँ जी वहाँ पर लगे हुए, 40 साल हो गए, आज भी कायम है।
0: ना जाने कितने इंजीनियर्स बना दी उन पेड़ों ने।
1: हाँ वहाँ पे तो उत्सव हुआ करता था, फादर साहब वहाँ पे पेड़ों के लिए बकायदा लगवाया करते थे, ये हमारे प्रोफेसर लोग ना पेड़ों को उगाने के लिए वो स्टाफ वगैरह लगाते थे, पानी वगैरह देते सारा
0: जी। शुक्रिया अशोक जी आपका बात करने के लिए,
1: शुक्रिया जी।
0: और

0: साथियों, वन महोत्सव इसी मौसम में आता है, यानी पहली जुलाई से 7 जुलाई तक मनाए जाने वाला ये एक वार्षिक उत्सव है, वृक्षारोपण उत्सव है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में वनों के संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की भावना को जगाना है। अब नहीं जगे तो कब जगेंगे? खैर, हमारे अगले श्रोता ऑनलाइन हैं। हेलो चंडीगढ़,
1: यश कुमार वर्मा जी। प्यार
0: भाई, यश कुमार वर्मा जी, क्या हाल है आपके?
1: बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं।
0: तबीयत ठीक है आपकी?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे?
1: बस आपने बहुत कुछ अच्छा अच्छा कह दिया और दोस्तों ने भी बहुत अच्छा कह दिया, और थोड़ा सा मैं भी कह रहा हूँ कि जैसे हम वृक्ष लगाने चाहिए, लेकिन मैं तो लगा चुका हूँ कई।
0: तो बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ जी,
0: और जब जब मौका मिले तब तक लगाया है, अच्छी बात है।
1: रणवीर भाई, और आपने थोड़े दिन पहले ही आपने माँ के नाम का पेड़ लगवाया
0: जी,
1: तो वो भी आपके कहने मोदी जी ने कहा था, लेकिन आपने फोन पे बताया तो मैंने कहा गमले में लगा देता हूँ।
0: हाँ, अगर आपके आसपास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप पेड़ नहीं लगा सकते, तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं वो आप लगा सकते हैं, और जितनी जितनी भी आपके पास जगह अपने घर में, गमलों में या आसपास कोई क्यारी है उसमें आप पौधे लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं जो आपके जीवन में मुस्कान बनकर हमेशा आपको देखकर मुस्कुराते हैं।
1: जी जी, और आपको आज होते क्या हुआ कि आज मुझे याद आ गया, अभी थोड़े दिन साल पहले, 5-6 साल हुए कि 28 में हमने 51 पेड़ लगाए, 51 पौधे।
0: अच्छा, 28 सेक्टर में आपने पेड़ लगाए थे?
1: हाँ जी जी, मतलब सभी भाई बहनों ने
0: जी
1: मिलकर पार्क में लगाए हमने 51। तो मैंने कहा भाई ये तो पेड़ पौधे को पानी रोज देना पड़ेगा, एक भाई पानी आप रोज देना, मैं तो रोज दूंगा। तो भाई जी पानी रोज मैं देता रहा, और कुछ समय बाद ना पौधों पे जो पेड़ पत्ते थे ना, पत्ते पत्तों पे दवाई गिरने से ना
0: जाल। जी शुक्रिया आपका जी। यश बाबू बात करने के लिए
1: जी धन्यवाद।
2: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: 10:31 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है लाइफ ऑन इन प्रोग्राम। हेलो चंडीगढ़, वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ, यही है हमारा आज का टॉपिक। नंबर्स एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2660615, 2660617 और 2660619, ये 3 नंबर्स हैं हमारे, इसमें से किसी एक को डायल करना है और अपने विचार हमसे साझे कर लेना है।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: और दोस्तों, वृक्ष केवल हमें हरियाली के लिए नहीं लगाने हैं, हरियाली तो होनी है, उसके साथ ये हमारी फूड चेन और जलवायु, हमारा संतुलन और हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं पेड़ पौधे। तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं और लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं कि हरियाणा के पानीपत में लगेंगे 3.29 लाख पौधे, वन विभाग स्वयं रोपेगा 1.29 लाख पौधे, और मानसून में ज्यादा से ज्यादा

0: पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो यूं तो हर राज्य का जो वन विभाग है, हर एरिया का वन विभाग है, इस मौसम का भरपूर फायदा उठाता है और पेड़ लगाता है, क्योंकि पेड़ों से ही जीवन है। हेलो चंडीगढ़, जी नाम बताइए, जगह का नाम बताइए, जी नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: हेलो नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, वेलकम।
1: मैं निर्मला बोल रही हूँ, अम्बाला से।
0: निर्मला जी अम्बाला से, कहाँ से अम्बाला से?
1: अम्बाला कैंट महेश नगर।
0: जी निर्मला जी कहिए।
1: सर ये जो पेड़ लगाते हैं ना, हम बचपन में थे ना जब स्कूल में पढ़ा करते थे, तो हमारे स्कूल में से ना सब बच्चों को लेके जाया करते थे पेड़ लगवाने के लिए। तो हम लोग भी जाते थे, 2 साल हमने भी लगाए पेड़, और वो पेड़ आज कुछ बहुत बड़े हो गए हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, पेड़ तो बहुत अच्छे लगते हैं, पेड़ों से तो दुनिया है
0: जी।
1: तो इसलिए पेड़ तो सबको लगाने चाहिए और इनकी केयर भी करनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं, लगाने के बाद
1: केयर तो करनी चाहिए,
0: उनकी संभाल जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। एक बार हम लगा के छोड़ देते हैं तो वो सूख जाते हैं, उनकी जब हम देखभाल नहीं करते तो वो तो फिर बेकार ही हो जाते हैं
0: जी। तो निर्मला जी ये तो आपने अपने जो स्कूली दिन है उनके बारे में बताया, उसके बाद कब कब मौका मिला? क्योंकि जब आदमी थोड़ा बिजी हो जाता है फिर ख्याल थोड़ा कम रहता है, लेकिन अब हमें ख्याल तो हर कीमत पे रखना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है।
1: सर मुझे बड़ा शौक है पेड़ पौधे लगाने का, मैंने घर में गमलों में लगा रखे हैं और मैं उनकी सुबह शाम देखभाल करती हूँ। मैं फ्री हूँ, घर में रहती हूँ
0: जी,
1: तो मेरे पास पूरा टाइम होता है पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए।
0: पौधों की देखभाल हो जाती है,
1: हाँ जी,
0: उनसे बातचीत हो जाती है,
1: टाइम बड़ा अच्छा पास हो जाता है, सबसे बड़ी बात
0: जी। और इस टाइम के पास होने के साथ साथ हरियाली भी बनी रहती है आसपास।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो निर्मला जी
1: बस ये है गुजारिश की अपने घर में हर कोई छोटे छोटे पौधे लगाएं
0: जी,
1: और उनकी देखभाल भी करें,
0: और अगर नहीं लगा पाए तो कम से कम जो आपके आसपास हरियाली है उसको बनाए रखने में अपना योगदान तो दें।
1: हाँ जी हाँ।
0: और विकास के साथ साथ हमें हरियाली का संतुलन बनाए रखने के लिए भी हर कोशिश जो है वो करनी चाहिए।
1: हाँ जी सर, बड़ी देर से ट्राई कर रही थी, मेरा तो फोन ही नहीं लगता।
0: आज लग गया निर्मला जी?
1: लग गया सर, कुछ ऐसे लिसनर है उनके तो डेली लगते हैं, मैं तो हैरान हो जाती हूँ, पता नहीं कैसे लग जाते हैं उनके।
0: वो तो वो हम भी हैरान है कि उनके पास क्या जादू है, हमने तो बहुत पूछा है।
1: सही बात
0: वो,
1: है
0: वो बताते ही नहीं है,
1: कुछ लिसनर है भाई उनके डेली लगते हैं।
0: आपको सही बताएं निर्मला जी, हमारे पास जिस तरह से फोन आता है उसी तरह से तुरंत हम जो हैं वो बात करते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: हमारी तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि फोन
1: नहीं, नहीं, वो हमें पता है सर, ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन वैसी बात कर रही हूँ भी, पता नहीं वो कितने लगती हैं क्योंकि हर रोज ही लग जाते हैं। तो हम लोग ट्राई, अब भी आप मानोगे मैं आधे घंटे से ट्राई कर रही थी
0: जी,
1: तो लगी रही मैं भी एक नंबर पे, मैंने कहा चल लगी रहती हूँ मैं भी, आज मैंने फोन करना ही करना।
0: चलो आपने जो कोशिश की निर्मला जी,
1: हाँ जी
0: उसके लिए पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं, और इस कोशिश के लिए एक प्यारा सा गाना हरा भरा,
1: ठीक है सर,
0: आपको हाँ फूलों के साए में ले चलते हैं।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।

0: तो बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: वेलकम बैक दोस्तों, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आज बात हो रही है जिस टॉपिक पर, वो है वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। हेलो चंडीगढ़, नाम बताइए जी, जगह का नाम बताइए।
3: नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार,
3: मैं रामवीर बोल रहे जी, गांव गिरमत, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से जी।
2: जी रामवीर जी, क्या हाल चाल है?
3: बिल्कुल ठीक है जी, और मैं तो बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ जी कि आपने वैसे राजकुमार को याद किया है और शुरू में गीत सुना कर दी। तो मेरे को तो आप ये चंडीगढ़ AIR के राजकुमार आप ही दिखाई देते हैं।
2: अच्छा अच्छा,
3: क्योंकि आप हर बात का ख्याल रखते हैं सर, इसलिए मैं तो आपको ये AIR चंडीगढ़ का हीरो समझता हूँ।
2: अच्छा।
3: बिल्कुल सर, आप थोड़ा हंसी के मूड में एक प्रोग्राम देते हैं और उससे हमें आनंद मिलता है।
2: अच्छा, शुक्रिया जी।
3: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जी, कोई इसमें दो राय नहीं के आप हंसी मजाक के मूड में प्रोग्राम पेश करते हैं, तो इतना अच्छा प्रोग्राम हमें लगता है, हमारा हौसला बढ़ता है। और
2: आपकी बात जो है वो सर आंखों पर है, और इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया।
3: शुक्रिया जी आपका जी। और जैसे आज का विषय है तो वो हमारे श्रोताओं ने उसको उभारा है, जैसे पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। तो हम अक्सर देखते हैं सर ये

0: में पेड़ लगाने की बात आती है तो मैंने कई स्कूलों में देखा है कि पेड़ हजारों की संख्या में बच्चों के लिए आते हैं, लेकिन हमारे पढ़े लिखे शिक्षक भी उन पेड़ों को लगाने की बजाय ऐसे ही सुखा देते हैं। मैं अपने गांव की बात बताता हूँ। मैंने अभी 2 साल पहले देखा कि एक अपने स्कूल में भी कम से कम भी हजारों पेड़ ऐसे सूख रहे, ना तो उन्होंने बच्चों को लगाने के लिए दिए ना स्कूल में लगवाए। सर, जब आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसे लापरवाही करेंगे तो आम जनता को कैसे समझा सकेंगे?
1: बिल्कुल सही है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो ये तो एक वाक्य होगा जो आपने बताया, आपको महसूस हुआ। अच्छा, ये बताइए कि अपने गांव में, बाकी आपके गांव के आसपास, आपने अपने घर में, आपके घर में, आपके घर के आंगन में कौन सा पेड़ लगा?
0: ये आंवले का पेड़ लगा रखे जी, एक जामुन का पेड़ है जी, बाकी अपना अमरूद के पौधे लगे हुए जो पिताजी ने लगाए थे जी, उनके
1: जो पिताजी ने लगाए थे आज से करीब कितने साल पहले?
0: वो तो उन्होंने 20 साल पहले लगाए थे जी, वो ऐसे कैसे लगे हुए हैं जी।
1: अच्छा, फल आते हैं उन पर?
0: हाँ जी, हाँ जी, फल आता जी, अमरूद।
1: देखिए, हमने आज आपसे पूछ लिया तो आपने बता दिया, इतनी देर हो गई आपको हमसे मिलते हुए, कभी आपने उन्हें बताया नहीं कि आपके जामुन भी लगा है, आंवला भी लगा है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: नहीं तो हम लेने लेने आ जाते।
0: आंवले का फल भी आता है जी, तो हम यूज भी करते हैं जी।
1: नहीं तो रामवीर जी, मैं कह रहा हूँ हम लेने आ जाते।
0: हाँ जी, जी आओ, कभी भी आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं आपके लिए।
1: अच्छा, तो आज इस टॉपिक के माध्यम से रामवीर जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं संदेश सर यही देना चाहता हूँ कि हमें जो जीवन देता है वो पौधे देते हैं, और हमें अपने जीवन को एक साफ सुथरा बनाने के लिए ताजी हवा चाहिए, तो वो केवल वृक्षों के द्वारा ही संभव है। तो हमें एक वृक्ष तो कम से कम लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए, और जहाँ तक हो सके गमलों वगैरह में फूल पौधे लगाएं, अपने आस पास हरियाली रखें और उनकी देखभाल करें, तो
1: और भी बहुत। हाँ, देखिए रामवीर जी, पेड़ कोई एक व्यक्ति अपने हाथ से लगाता है तो लाखों व्यक्तियों को वो जो है पेड़ फायदा पहुंचाता है। उसके फल, उसकी हवा, उसकी छाया,
0: बिल्कुल जी,
1: है ना? तो यही तो हमारा जीवन है, और हमारी जो आना जाना है हमारा इस इन राहों पर, इन्हीं के साए में तो है।
0: देखिए, जब हम ये 5वीं में पढ़ते थे तो वो पढ़ते थे कि वनों से हमें क्या लाभ है। वनों के लाभ वो कम से कम भी वो सारे लाभ के दवाइयां मिलती है, लकड़ी मिलती है, ये सब कागज बनता है इनके जो लकड़ी से, तो सब कुछ तो ये देते हैं, तो फिर भी हम इनको इग्नोर करते हैं, तो वो हमारी अपनी कमी है जी।
1: जी रामवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम में बात की, आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे ये कामना हमारी।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल, सब स्वस्थ रहे जी, मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से।
1: हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो
1: जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: मैं अनवर खान, सेक्टर 41 से।
1: अनवर भाई, क्या हाल चाल है?
2: बहुत दिनों में फोन आपसे बात हो रही है।
1: बहुत अच्छा लग रहा किया करो बात, आप क्यों नहीं करते? हम तो आते रहते हैं
2: रोज, आना आपका प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छे से पेश करते हैं
1: जी। शुक्रिया।
2: हमने भी लगाए थे पेड़ और बड़े हो गए तो अच्छा लगता है देखने में।
1: हाय, कौन कौन से लगाए?
2: ये बकायन के थे और एक बरगद का पेड़ था। तो ये छोटे छोटे मिल गए थे हमें, तो हमने इनको अच्छा बड़ा कर दिया। देखभाल हमारी शॉप के सामने है, तो हम इसको सामने इनको लोगों से बचा के इसे बड़े हो गए। अच्छा लगता है जब बड़े हो जाते हैं तो
1: बचा के बड़े किए।
2: वो फिर वो बच्चे हैं कोई। हाँ। वो कर देते हैं, पार्क है सामने।
1: देखिए तो, अनवर भाई, जो आपने ये बात कही ना कि बचा के बड़े किए
2: जी,
1: ये बहुत वजन है इस बात में।
2: देखभाल करनी पड़ती है ना पूरी, उसको हर वक्त निगरानी रखनी पड़ती है
1: जी। क्योंकि आप

0: ने उन्हें उस समय बचाया जब वो खुद बच पाने में सक्षम नहीं थे, आज आपने उनको बड़ा किया, एक पेड़ का रूप दे दिया, अब आने वाले समय में वो हमें बचाएंगे?
1: नहीं, वो अच्छा लगता है, वो फिर हमारे यहाँ पे गाड़ियां वगैरह खड़ी होती हैं, पेड़ की छाया में लोग बैठते हैं तो
0: अब जितने भी गाड़ी वाले हैं, स्कूटर वाले हैं, वो गर्मियों में पेड़ की छाया ढूंढते हैं।
1: जी,
0: जितने भी साइकिल
1: तो
0: वाले,
1: हमने तो कुछ भी नहीं दिया, ये देखो कब तक रहेंगे और कब तक हमें देते रहेंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: हमने तो थोड़ी सी मेहनत करी, लेकिन ये हमें जब तक रहेंगे ये तो हमें देते रहेंगे,
0: क्योंकि
1: लिया क्या इन्होंने,
0: आपका ढेर सारा प्यार या एक छोटी सी शुरुआत, उनका ढेर सारा जो है हमें हरा भरा जो है पूरा वातावरण मिलता है।
1: जी, अपनी जिंदगी में जरूर।
0: आप अनवर भाई चंडीगढ़ कहाँ से बोल रहे हैं?
1: 41 से।
0: 41 से, तो बहुत अच्छी बात है, आपने पेड़ लगाए, उनको बचा बचा के बचाया और आज वो बड़े हो गए। यही भावना जो है हर धरतीवासी में होनी चाहिए, तो हमारी हरियाली का संतुलन बना रहेगा, हमारी जलवायु का संतुलन बना रहेगा, हमारा इकोसिस्टम जो है वो बना रहेगा।
1: चंडीगढ़ तो इसी बात से मशहूर है ना, ग्रीन सिटी।
0: जी, इसे कहते हैं ग्रीन सिटी, इसलिए कहते हैं।
1: हर आदमी की यही कोशिश होती है कि अपने
0: पग पग पर, हर मोड़ पर पौधा है, पेड़ है, हरियाली है। शुक्रिया भाई,
1: बहुत बहुत बहुत बहुत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में, इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में, वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और अपनी भावनाएं जो हैं धरती माँ के लिए, हरियाली के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, उन्होंने हमसे साझी की हैं। हेलो चंडीगढ़। जी नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। जी नमस्कार जी,
2: पंचकुला से बोल रही हूँ, माया शर्मा।
1: पंचकुला से, कौन से सेक्टर से?
2: 20, सेक्टर 20।
1: जी नाम एक बार फिर से बताइए।
2: माया शर्मा, आपसे एक बार पहले भी बात हुई है।
1: जी माया शर्मा जी सेक्टर 21 पंचकुला से फरमा रही हैं। माया जी बोलिए।
2: जी पहले हम पहले बता देते कि हमने ना अपना जो हाउस बनाया था उसके बाहर हमने 5 अशोक का लगाए थे, चांदनी लगाई थी, एक कड़ी पत्ता का लगाया था और गुलाब तो मैं लगाते ही रहती हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है।
2: और 50-60 मेरे गमले थे
1: जी,
2: उनमें सबने पेड़ लगाती थी। और हम अब हम सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ भी अमरूद का लगवाया, एक और एक आम का लगवाया
1: जी,
2: और गुलाब के गमले लगे हैं वहाँ पे बहुत।
1: हाँ अब सोसाइटी में, माया जी एक बात याद आई, सोसाइटी में आप रहती हैं तो एक बात का ख्याल जरूर हमें रखना चाहिए जो लोग सोसाइटीज में रहते हैं, कि वो अपनी बालकनीज में गमले ना रखें ऊपर।
2: नहीं, वो गमले नहीं रखते हम। हाँ, वो सोसाइटी में हमारे सारे जो रखते हैं वो दूसरी साइड रखते हैं, जहाँ से कोई गिरने का।
1: हाँ कई बार ऐसे कई हादसे हुए जहाँ आंधी आई, तूफान आया और गमला नीचे गिर गया तो नीचे उसने नुकसान कर दिया। जी जी जी जी, अभी हाल ही में एक सोसाइटी में ऐसे हुआ। वो तो चलो,
2: हिमाचल से पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं, हिमाचल में भी हमारा घर है, वहाँ भी हमने काफी लगाए
1: हैं। हिमाचल कहाँ में?
2: हमीरपुर में है।
1: आप हमीरपुर में, अच्छा। एक और हमारी श्रोता है, एक और हमारी श्रोता है जो हमीरपुर से फोन, हमीरपुर में उनका घर है, वो भी फोन कर दें। आप वहाँ से आ रही हैं कि वहाँ जा रही हैं?
2: नहीं अभी वापस आ रहे हैं।
1: वापस आ रहे हैं तो चलिए,
2: किया था हमने।
1: अच्छा अच्छा,
2: पालमपुर भी गए तो वहाँ भी मैंने एक एवोकाडो का लगवाया और एक उसका लगवाया क्रिसमस ट्री।
1: बहुत अच्छी बात है।
2: देखो चाची आपका पेड़ कितना बड़ा हो गया।
1: कितनी तो खुशी होती है ना।
2: वो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, जी, तो माया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सफर बहुत अच्छा रहे, सुहाना रहे।
2: थैंक यू जी, थैंक यू।

0: तो साथियों, ये तो था आज का हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में हमने टॉपिक चुना, वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने के अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। आप सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूं कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। श्रोताओं, आज के युग में बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं। लोगों के रहन सहन, खाना पीना और पहनावे में बहुत परिवर्तन आ गया है, परंतु आज भी कुछ लोग पुरानी सोच वाले हैं। श्रोताओं, अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हमारे समय में ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, महिलाओं को घर में रहना चाहिए, अधिक शिक्षा की आड़ लेकर लड़कियां बिगड़ रही हैं। और ये तो जरूर ही सुना होगा कि ज्यादा पढ़ी लिखी बहू में संस्कार की कमी होती है, परंतु ऐसा नहीं है। आज शिक्षा ने नारी को इतना सशक्त बना दिया है कि वह बड़े से बड़े काम को बहुत ही सहजता से संपन्न करती है, घर की जिम्मेदारियों का पालन बहुत ही सही ढंग से करती है। परंतु कुछ ही पुरानी सोच रखने वाले लोग आज भी उन्हीं नियमों का पालन करते हैं और अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते। उनके अनुसार बहू और बेटी में बहुत बड़ा अंतर है। बहू को तो घर में रहकर सिर्फ घर के ही काम करने चाहिए। अगर घर की बहू बाहर जाकर नौकरी करती है तो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच जाती है, जबकि बेटी को नौकरी करने और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने पर बल दिया जाता है। उनके अनुसार बहू और बेटी दोनों के लिए अलग अलग नियम है, परंतु आज उन पुरानी सोच रखने वाले लोगों

0: को समझना होगा कि बहू और बेटी दोनों को शिक्षा और नौकरी करने का अधिकार है, परंतु पुरानी सोच रखने वालों के कारण ही नारी को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है। रीति रिवाज के नाम पर घर की चार दीवारी में बंद रखा जाता है, जिससे नारी के गुणों को उजागर नहीं किया जाता, परंतु शिक्षा पाकर महिलाओं को उनके अधिकारों का ज्ञान होता है। शिक्षा पाकर ही वे घर गृहस्थी में सहयोग दे पाती हैं। इस विषय पर हम आपसे कुछ बात करेंगे और कुछ सुनाएंगे, एक नाटक। पूनम एक पढ़ी लिखी और बहुत ही संस्कारी बहू है। वह सुलोचना जी मतलब अपनी सांस का बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखती है। वह अपने घर का काम बहुत ही सलीके से करती है और पूरी कोशिश करती है कि उसकी सास को उसे किसी प्रकार की शिकायत ना हो। परंतु सुलोचना जी, जो पूनम की सास, बहुत ही पुराने विचार की है। वह पूनम के हर काम पर कड़ी नजर रखती है। वह चाहती है जिस प्रकार उन्होंने अपनी सास के समय उनकी किसी भी बात का विरोध नहीं किया, उसी तरह पूनम भी उनके हर एक फैसले को माने और हर काम को पूछ कर करे। वहीं समीर, जो पूनम का पति है, वह एक कंपनी में काम करता है। समीर पूनम और अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता है, परंतु वह कभी भी अपनी माँ और पत्नी के बीच होने वाली बातों में नहीं बोलता। वह पूनम को ही समझाता है कि माँ की किसी बात का बुरा ना मानना। और पूनम भी सुलोचना जी का पूरा सम्मान करती है। सुलोचना जी की बड़ी बेटी श्रद्धा एक विवाहित महिला है। वह अपनी माँ के घर पर कुछ दिन रहने के लिए आई है। उसका एक 2 साल का बेटा है। वह एक ऑफिस में काम करती है। वह बहुत ही समझदार महिला है। वह अपनी माँ को भी समझाती है कि आजकल लड़कियाँ बहुत काम कर रही हैं, घर के साथ साथ ऑफिस में भी काम करती हैं। परंतु पुराने विचारों होने के कारण वह श्रद्धा की बात को अनसुना कर देती है और अपने विचारों को अहमियत देती है। वही पूनम अपनी सास और ननद का पूरा ध्यान रखती है और अपने काम में व्यस्त रहती है। वहीं सुलोचना जी के पति रामचंद्र जी बहुत ही शांत व्यक्ति हैं। वह सुलोचना जी को समझाते हैं, परंतु सुलोचना जी को समझाने के लिए तथा इस युग में बहू बेटी एक समान है ये बताने के लिए आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
1: अरे सुनती हो, अभी तक सुबह की चाय नहीं आई।
2: अरे क्या, अब तक चाय नहीं दी आपको? तभी बोलती थी ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाओगे तो यही होगा।
1: अरे इसमें पढ़ाई लिखाई कहाँ से आ गई? क्या पता बहू किसी काम में बिजी हो, तुम क्यों नहीं चाय बना लेती?
2: हाँ, घर में बहू के होते हुए अब मैं काम करूँ।
1: तो क्या हुआ, घर के छोटे छोटे काम करने से तुम थोड़ी छोटी हो जाओगी? अरे काम करने से तो शरीर फिट रहता है।
2: हाँ, मुझे तो घर की नौकरानी बना दो। पहले आपकी माँ की जी हजूरी की, अब आपकी बहू की जी हजूरी करूँ। तो सुन लो, ये सब मुझसे नहीं होगा।
1: तुम भी ना छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देती हो।
3: सॉरी पापा जी, वो थोड़ी देर हो गई चाय देने में।
1: कोई बात नहीं बेटा।
3: माँ जी, क्या आपको कुछ चाहिए?
2: नहीं बहू, तुम जाकर समीर को नाश्ता देकर जल्दी से उसके ऑफिस का टिफिन पैक कर दो। और हाँ, सभी काम सफाई से और ध्यान से करना।
3: जी माँ जी, ठीक है।
0: परंतु पूनम को घर के सारे काम साड़ी पहनकर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए वह समीर से बात करना चाहती है, तो वह समीर के लिए नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में समीर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। पूनम कुछ समय चुपचाप वहीं खड़ी रही और सोचती है कि किस प्रकार वह समीर से बात करे। तभी पूनम समीर से बोलती है।
3: समीर, समीर सुनो ना, कुछ बात करनी है मुझे आपसे।
4: हाँ बोलो, क्या बात है?
3: समीर, घर के काम करते समय क्या मैं साड़ी की जगह सूट पहन सकती हूँ?
4: अरे यार पूनम, तुमको तो पता है ना, माँ को तुम्हारा सूट पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं।
3: पर समीर, मैं घर के बहुत से काम को साड़ी पहनकर नहीं कर सकती। प्लीज समीर, समझने की कोशिश करो। समीर, एक बार तुम माँ से बात करो ना।
4: देखो पूनम, मैं इस बारे में माँ से कुछ नहीं कहने वाला, और तुम भी जानती हो माँ नहीं मानेगी।
3: तो क्या मैं एक बार माँ से बात कर लूँ?
4: तुमको जो ठीक लगे वो करो, पर मैं तो माँ को कुछ नहीं बोलने वाला। हाँ, पर मुझे तुम्हारे सूट पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैं ऑफिस चलता हूँ।
0: इतना कहकर समीर गाड़ी लेकर जॉब पर चला जाता।

0: और पूनम घर के काम में लग जाती है। वो किचन के काम कर ही रही होती है और अपनी सास से बात करने के बारे में सोच रही होती है कि किस तरह से वह अपनी सास से साड़ी की जगह सूट पहनने वाली बात कहे। उसकी काम वाली शांता उसको देखकर पूछ लेती है, बीबी जी क्या सोच रही हो? तो पूनम बोलती है, कुछ नहीं बस वैसे ही। और तभी पूनम की सास सुलोचना जी वहां आ जाती है। अभी सुलोचना जी रसोई का जायजा ले रही थी, तभी पूनम हिम्मत करके उनसे पूछ लेती है,
1: हाँ क्या बात है बोलो।
2: माँ जी आप कहें तो मैं भी आपकी तरह घर में सूट पहनना शुरू कर दूं क्या? वो साड़ी में काम नहीं हो पाता है मुझसे।
1: खबरदार बहू, जो मेरे सामने तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो इस घर में तुम मेरी बराबरी करने चली हो।
2: नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस
1: मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन एक बात याद रखना बहू, जब तक मेरी सास जिंदा थी मैंने हमेशा ही साड़ी पहनी थी और साड़ी का पल्लू हमेशा सर से उतरने नहीं दिया। उनके गुजर जाने के बाद ही मैंने अपनी मर्जी से सूट पहनना शुरू किया था, उससे पहले नहीं। और तुम्हारी सास यानी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगी तब तुम अपनी मर्जी से घर में जो मर्जी पहन लेना।
0: ये कहते हुए सुलोचना जी रसोई से बाहर निकलकर वापस जाने के लिए मुड़ी थी कि उनकी नजर अपनी बेटी श्रद्धा से टकरा गई। लेकिन आज अचानक अपनी माँ की ऊंची आवाज सुनकर वह सीढ़ियों से उतरकर रसोई में आ पहुंची थी और अपनी माँ से इस तरह गुस्सा करने की वजह पूछती है,
3: क्या हुआ माँ, आप भाभी पर इतना नाराज क्यों हो रही हो? क्या बात हो गई?
1: अरे क्या बताऊं बेटा, आजकल की बहुएं ससुराल आते ही अपनी सास की बराबरी करने लगती हैं।
3: लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ।
1: तेरी भाभी को साड़ी पहनने से परहेज हो रहा है, इसका सूट पहनने का मन कर रहा है।
3: माँ सूट तो मैं भी पहनती हूँ, इसमें क्या दिक्कत?
1: मुझे दिक्कत है।
3: लेकिन क्यों माँ?
1: बेटा तेरे ससुराल में तेरी सास नहीं है और दामाद जी तुझे खुद बाजार ले जाकर तेरी पसंद के कपड़े दिलवाते हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है।
3: माँ मैं कुछ समझी नहीं।
1: तेरी भाभी का सूट पहनना ना तो मुझे पसंद है और ना ही तेरे भाई समीर को।
3: लेकिन माँ समीर को भाभी के सूट पहनने से क्या दिक्कत है?
1: बेटा यह बात उसे अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं, मुझे जो पसंद है वही मेरे बेटे को पसंद है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ।
3: पर माँ
0: तभी एक चीख सुनाई देती है। ये चीख रोहित यानी श्रद्धा के बेटे की थी, जो अपनी माँ श्रद्धा के पीछे पीछे आने की कोशिश में सीढ़ियों से गिर गया था और बहुत ही चीख चीख कर रो रहा था। उसके सिर पर चोट आई थी, बहुत खून निकल रहा था। तभी पूनम और काम वाली शांता भी वहाँ आ गई। सुलोचना जी घबराकर रोने लगी और कहती है,
1: अरे अरे ये क्या हुआ, रोहित कैसे गिर गया? हे भगवान कितनी चोट आई है इसे। शांता जरा देख तो सही, पड़ोस वाले शर्मा जी घर पर ही हैं ना, जल्दी जा उन्हें बुला कर लेकर आ, रोहित को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, जल्दी जा।
0: पर माँ जी अभी तो उनको मैंने ऑफिस जाते हुए देखा है, वो तो चले गए अपने ऑफिस।
1: अरे अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं, घर में कोई आदमी भी नहीं है जो रोहित को हॉस्पिटल ले जाए, हे भगवान।
2: माँ जी समीर भी ऑफिस चले गए, घर पर नहीं है, आप कहो तो मैं उनको फोन करके बुला लूं क्या घर?
4: अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अरे भाभी आपको तो स्कूटी चलानी आती है ना, आप तो स्कूटी से कॉलेज जाती थी ना। भाभी जल्दी से स्कूटी की चाबी ले आओ और रोहित को हॉस्पिटल ले चलो, भाभी प्लीज जल्दी करो।
2: पर दीदी
1: पर वर क्या, जल्दी कर बहू, ये ले स्कूटी की चाबी और रोहित को हॉस्पिटल ले जाओ।
4: जी माँ जी ठीक है।
0: साड़ी का पल्लू संभालते हुए स्कूटी चलाने के लिए बाहर की ओर चलती है, तभी उसकी सास सलोचना जी आवाज लगाती है,
1: अरे बहू रुक, पहले सूट पहन ले, साड़ी पहनकर स्कूटी कैसे चलाएगी, कहीं गिर गई तो?
4: पर माँ जी
1: पर वर कुछ नहीं, जल्दी कर जाके सूट पहन और रोहित को जल्दी ले जाओ हॉस्पिटल।
4: ठीक है माँ जी।
0: पूनम बहुत ही हैरान थी सास के ऐसे व्यवहार से। वो सास जो अभी कुछ देर पहले बोल रही थी कि मेरे मरने तक का इंतजार करो तब करना अपने मन के, और अब वो खुद ही बोल रही है कि सूट पहनकर और घर से बाहर जाने के लिए स्कूटी की चाबी दे रही है। स्कूटी की चाबी मिलते ही मानो पूनम की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, अब वह खुद को बहुत खुश और आजाद महसूस कर रही थी। पूनम ने जल्दी से सूट पहना और स्कूटी की चाबी ली और रोहित और श्रद्धा के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई, जिससे रोहित का इलाज समय पर हो सका।

और सुलोचना जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब सुलोचना जी अपनी बहू को हर वो काम करने को कहती जो उनकी बेटी करती है, फिर वो पढ़ाई हो या जॉब। अब तो सुलोचना जी खुद पूनम को मार्केट ले जाती और उसकी पसंद की ड्रेस दिलवाती है, और पूनम भी सुलोचना जी की बहुत सेवा करती है, अपनी माँ से भी ज्यादा ध्यान रखती है। सारा दिन उनके घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहता है।

तो श्रोताओं, आपने इस कहानी के माध्यम से सुना कि किस प्रकार एक छोटी सी घटना ने सुलोचना जी की पुरानी सोच और रूढ़वादी सोच को बदल कर रख दिया और किस तरह उनकी सोच बदल गई। इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या विचार आए हैं, जरूर हमें बताएं।

इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। ये आकाशवाणी है, हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं, FM 107.2 MHz पर। इस समय 11:15 हुए हैं, तो लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: प्रोग्राम सुन रहे सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और हमारे सभी श्रोताओं का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी तो हमेशा की तरह आज भी बहुत सारे संदेश आपके हमें मिले हैं, बहुत सारे मैसेजेस हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने आपने चुने हैं सुनने के लिए। तो फिर ऐसा करते हैं, समय व्यर्थ नहीं करते और आप ही की फरमाइश पर सुनते हैं ये पहला गीत। आप ये गीत सुनिए, ये गीत किसने सुनना चाहा ये हम आपको इस गीत के बाद बताते हैं।

ही डांशा फिल्म के लिए आपने इस प्रोग्राम का ये पहला गीत सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसे सुनना चाहते थे ज़िला मुरादाबाद, गांव दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। आशा करते हैं आपने अपनी पसंद ये सुन ली होगी। अगला गीत भी लता मंगेशकर की आवाज़ में ही है। फिल्म का नाम है रज़िया सुल्तान और इस गीत को सुनना चाहा है। ये फरमाइश हमें आई है आबू धाबी यूएई से। हमारे श्रोता हैं शेख जियाउर रहमान और इसी गीत को मानपुर साबित ज़िला मुरादाबाद से हमारे श्रोताओं ने सुनना चाहा है। आप हैं शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान। पेश है आप सबकी पसंद।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं इस प्रोग्राम का अगला गीत। मोहम्मद रफी ने इसे गाया है, फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। और ये गीत सुनवाने के लिए आप सबने फरमाइश की है। कृष्णा पार्क दिल्ली के आप हमारे श्रोता हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना। इसी गीत को सुनना चाहा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से। आप हैं जी रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, छोटी गुड़िया, नूर, नमन, गुरकीरत, सिमरत, गुरशब्द सिंह राहुल और विजेंद्र कुमार जय जान। सुनते हैं आप सबकी पसंद पर मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये अगला गीत। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी।

बात पे तुम रूठा ना करो, दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा ना करो। वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की। ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक। फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से चिल्ला।

एक दिन तुम्हारे दिल में भी एक आग उठेगी, तूफान उठेगा, मोहब्बत जाग उठेगी। हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद, सर के बल चल कर आऊंगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम, सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं, फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला।

ओ बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना।

0: गम तेरे और दिल पर सोनिए तेरे हैं हम तेरे।
1: हमारे श्रोता सुन रही हैं प्रोग्राम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, उससे पहले आपके लिए ये एक संदेश।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: अली जी, अब सुनिए इस प्रोग्राम का अगला गीत। इसे सुनना चाहते हैं सेक्टर 9 पंचकुला के आप हमारे श्रोता हैं, रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, देवांशु गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, चित्रांशु गुलाटी, दीपांशु गुलाटी और गुलाटी परिवार के सभी सदस्य। आपने तेरे नाम फिल्म का गीत सुनना चाहा है।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ मन्ना डे का गाया गीत, फिल्म का नाम रात और दिन। सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ के हमारे श्रोता सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।

ये गीत आप सुनेंगे प्यासा सावन फिल्म के लिए, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। सुनना चाहते हैं गांव नाई वाला, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान के हमारे श्रोता वेद मिट्टा और अलका मिट्टा।

ये गीत है श्रोताओं बेताब फिल्म से, और इसे सुनवाने के लिए आप सबने फरमाइश की है। आप हैं गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। इसी गीत को हमारे कुछ और श्रोता भी हैं, उन्होंने भी सुनना चाहा है। आप हैं बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिल्का के हमारे श्रोता रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा। चलिए सुनते हैं आप सबकी पसंद।

0: म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस प्रोग्राम चल रहा है। अगला गीत सुनते हैं श्रोताओं आप ही की फरमाइश पर, उससे पहले ये संदेश सुन लेते हैं।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: अजनबी फिल्म का गीत सुनते हैं, आवाज किशोर कुमार की है और इस गीत को आप सबने सुनना चाहा, नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। सुनते हैं आप सबकी पसंद पर अजनबी फिल्म से ये गीत।

और चलिए अब सुन लेते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। महबूबा फिल्म के लिए इस गीत में किशोर कुमार के साथ आप लता मंगेशकर को सुनेंगे। फरमाइश करते हैं आप सब हमारे श्रोता, आप हैं जी अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर।

हमारी श्रोता सुन रही थी फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम का समय अब यहाँ पर समाप्त हो रहा है। सुनीता भगत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: Music, hashtag, InstaFace. Instagram पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला.
1: ये आकाशवाणी है. आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर. श्रोताओ, इस समय दोपहर के 12 बजने को हैं. थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि

0: मैंने उस पर मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में।

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. होटल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में. इंदिवर के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था. इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है.

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हमने आपके लिए विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से

बोल रही हैं श्रोताओं, इस समय 1 बजा है। अब हम आपको अपने अब से लेकर रात तक के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। तो श्रोताओं, थोड़ी ही देर में 1:05 पर और फिर शाम 6:10 पर आप प्रादेशिक हिंदी समाचार सुन पाएंगे। दोपहर 1:10 पर और फिर शाम 6:20 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार भी सुनवाएंगे आपको। ये पंजाबी समाचार हम आपके लिए जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। दोपहर 1:15 पर हमारे यहाँ से आप फिल्म संगीत सुन पाएंगे। फिल्म संगीत आपको शाम 5:05 पर भी सुनवाएंगे हम। हमारे मुंबई केंद्र से आप सुना करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर, दोपहर 1:30 पर। फिर श्रोताओ, वहीं से दोपहर 2 बजे आज आप सुन पाएंगे कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष।

श्रोताओ, आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले किया करते हैं। ये समाचार आप सुन पाएंगे पहले दोपहर 2:15 पर, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 पर और फिर रात 11 बजे भी। मुंबई केंद्र से सदाबहार नगमे सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। वहीं से हर रोज दोपहर 3 बजे होता है कार्यक्रम सखी सहेली और शाम 4 बजे पिटारा कार्यक्रम सुना करते हैं आप। आज श्रोताओं, इस कार्यक्रम में मनीष वैद की लिखी गीतों भरी कहानी सुनवाई जाएगी, सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। हमारे स्टूडियो से शाम 5:20 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा लम्हे। एक और प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 5:30 पर। ये NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम है उमंग।

आज हम आपको अमृत बाणी भी सुनवाएंगे। समय रहेगा शाम 6:30। विविध भारती की मुंबई केंद्र से सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जयमाला आप सुना करते हैं शाम 7:00। हमारे यहाँ से प्रादेशिक मुख्य समाचार भी सुनवाए जाते हैं आपको। समय है शाम 7:45 और फिर रात 10:30। कुछ पंजाबी गीत भी सुनवाएंगे आपको, ये आप सुन सकते हैं शाम 7:47 पर। पंजाबी गीतों का कार्यक्रम सुर सांझ सुन सकते हैं आप रात 10:32 पर। श्रोताओं, रात 8:00 हवा महल कार्यक्रम होता है। आज सुनेंगे इसमें एक प्रहसन, पड़ोसी का कैमरा। मुंबई केंद्र से ही नई फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक सुन सकते हैं आप रात 8:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके लिए रात 9:00 होगा। रात 9:30 पर मुंबई केंद्र से ही रिले किया जाएगा कार्यक्रम आज के फनकार। आज के फनकार हैं श्रोताओं अभिनेता राजकुमार, और फिर वहीं से हम सुनेंगे उद्घोषक की पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छायागीत रात 10:00। तो श्रोताओं, ये था विवरण हमारे अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का।

FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर हम विविध भारती की चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं। 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार, इसके बाद एक

0: कर 10 मिनट पर श्रोताओं हम आपके लिए अपनी जालंधर केंद्र से रिले करेंगे प्रादेशिक पंजाबी समाचार।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के शुरू होने के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के श्रद्धालुओं के नाम एक विशेष पत्र लिखकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बाबा बर्फानी के दर्शन हर शिव भक्त के लिए सौभाग्य का विषय हैं और ये यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन परम्परा का भी जीवंत प्रतीक है। श्रद्धालुओं के लिए एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए 5 महत्वपूर्ण संकल्प लेने का आग्रह किया है। इन संकल्पों में उन्होंने प्रमुख रूप से स्वच्छता बनाए रखने, सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने, वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करने और सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने यात्रा के सफल संचालन के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, सुरक्षा बलों और सभी स्वयं सेवकों के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने सभी तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी चेतावनियों और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। हरियाणा के सिरसा जिले में पैदा होने वाले रसीले और स्वादिष्ट किन्नू को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला है। राज्य के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि ये कृषि में हरियाणा का पहला स्वतंत्र जीआई टैग है। इससे पहले हरियाणा को बासमती चावल और फुलकारी के लिए अन्य राज्यों के साथ संयुक्त जीआई टैग मिले हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे गौरवमयी क्षण बताते हुए कहा कि यह सम्मान क्षेत्र के किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाएगा और उनके उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि जीआई टैग मिलने से अब केवल सिरसा के निर्धारित मानकों पर उगे किन्नू को ही आधिकारिक रूप से सिरसा किन्नू के नाम से बेचा जा सकेगा। इससे बाजार में नकली उत्पादों और गलत ब्रांडिंग पर पूरी तरह रोक लगेगी। इसके अलावा इस प्रमाण पत्र से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिरसा के किन्नू की साख बढ़ेगी और किसानों को सीधा निर्यात करने के अवसर मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि अकेले सिरसा जिले का राज्य में कुल किन्नू उत्पादन में लगभग 55% का योगदान है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के साथ साथ हरियाणा सरकार द्वारा बागवानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सिरसा के वीटा दुग्ध संयंत्र परिसर में लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक किन्नू जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में राज्य में 25 नए बुनियाद केंद्र खोलने और कुरुक्षेत्र स्थित सुपर 100 सेंटर को 100 नए कंप्यूटर देने की घोषणा की।
2: ये घोषणा भी करता हूँ कि 103 जो ऑनलाइन सेंटर हैं, इसमें 25 सेंटर और जोड़े जाएंगे। ये 125 सेंटर हो जाएंगे जो बुनियाद के तहत खोले जाएंगे। बच्चों को डिजिटल शिक्षा वो बेहतर तरीके से मिल सके कि वहाँ पर कंप्यूटर लाइब्रेरी हो। मैं इसके लिए जो कुरुक्षेत्र सेंटर है जहाँ से आप निकल करके आए हैं, उस सुपर 100 सेंटर्स के अंदर 100 कंप्यूटर देने की मैं घोषणा करता हूँ।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों के ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले बच्चों ने आईआईटी जेईई जैसी कठिन परीक्षा पास कर ये साबित कर दिया है कि संकल्प और मेहनत से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से सफल बेटियों को प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। नूह जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तेजी से जारी है। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रपत्रों के वितरण, डिजिटलीकरण तथा सत्यापन का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि जिले में कुल 6,59,697 मतदाता हैं तथा सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 100% गणना प्रपत्र डाउनलोड एवं प्रिंट किए जा चुके हैं। अब तक 6,45,323 गणना पपत्रों का वितरण किया जा चुका है जो कुल गणना पपत्रों का 97.82% है। इसी के साथ प्रादेशिक

0: 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबर खत्म हुई। साडा एक्स हैंडल @AIRRN जलंधर। खबरां दा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन तुसी सुनोगे दोपहर बाद 1:40 ते। नमस्कार।
1: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 1:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। आज श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हीं पर फिल्माए गए कुछ गीत सुनवा रहे हैं। जैसा कि आप जानती ही हैं, राजकुमार हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और दमदार अभिनेताओं में गिने जाते रहे हैं। वैसे उनका असली नाम जो है वो कुलभूषण पंडित है। जन्म उनका 8 अक्टूबर को हुआ। और ये भी आपको बता दें, फिल्मों में आने से पहले वो मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम भी किया करते थे। तो एक अलग ही अभिनय शैली थी उनकी। बहुत ही दमदार आवाज़ के मालिक थे वो, और एक प्रभावशाली संवाद अदायगी के साथ वो जो दर्शक हैं उनके दिलों पर छा गए थे। तो उन पर फिल्माया गया। आइए सबसे पहले सुनवाते हैं आपको हीर रांझा फिल्म से ये गीत।

राजकुमार की गहरी और बुलंद आवाज उनकी एक खास पहचान थी। संवाद बोलने का भी उनका एक बड़ा ही अनोखा अंदाज रहा। बड़े शाही व्यक्तित्व के मालिक और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस थी उनकी। उनके बहुत सारे जो संवाद हैं बेहद मशहूर हुए। प्रमुख फिल्मों में मदर इंडिया, नीलकमल, पैगाम, दिल एक मंदिर, वक्त, हमराज, ही राजा, पाकीज़ा, सौदागर, तिरंगा वगैरह थी। उन्हीं पर फिल्माया गया। अब हम आपको मर्यादा फिल्म का गीत सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये एक संदेश।

अभिनेता राजकुमार कश्मीरी पंडित थे। उनके बारे में काफ़ी रोचक बातें हैं। उनकी आवाज़ और संवाद अदायगी इतनी अलग थी कि लेखक अक्सर उनके लिए विशेष अंदाज में ही संवाद लिखा करते थे और जानी जैसे उनकी पहचान ही बन गया था। अपनी शर्तों पर काम करने के लिए ही वो जाने जाते रहे। कभी कभार कोई कहानी या भूमिका पसंद ना आती उन्हें तो बड़े से बड़े निर्माता को भी वो ना कह देते थे। राजकुमार का सफ़ेद जूते पहनना भी उनकी खास पहचान बन गई थी और ये उनके व्यक्तित्व का कह सकते हैं कि एक स्थायी हिस्सा बन गया था। अपनी बेबाकी के कारण भी वो चर्चा में रहे। उनके बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं और उनके अभिनय के तो सभी दीवाने ही हैं।

0: तो श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज हमने आपको अभिनेता राजकुमार पर फिल्माए गए गीत सुनवाए। ये कार्यक्रम अब समाप्त हो रहा है। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
0: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, अब आप हमारा प्रसारण मुंबई केंद्र से सुनेंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर।
2: तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की तो बहुत तादाद है, लगभग यूं कहें कि बाढ़ तो नकारात्मक हो जाता है, लेकिन हाँ बहुत लंबी तादाद में टिप्पणियाँ आ रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम पढ़ते जाएं। ज़रा संक्षेप में लिखिए तो ज़्यादा तादाद में टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि मदमस्त मौसम की मादकता को मधुमेह बनाती इबारत है, हुस्न इश्क को ऊर्जा उत्सर्जित करती शीतल बयार, और रिमझिम फुहार मानो प्रकृति प्रदत्त प्रेमांजलि हो और प्रेमी युगल को आवाहन कर रहा हो। इस प्रेम रस में सराबोर हो, सर्वस्व लुटा प्रेम में हो जाओ, रिमझिम के तरानों के सुरीले सरगम सफर का इंतजार है। भाई, इंतजार तो खत्म हो चुका है और अब ये सुरीला सफर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भई आहा, आज तो गजब के गाने हैं और हमने आपको देखा था मुंबई में बारिश में भीगते हुए। आप सब भी भीगते हैं बारिश में। आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और कोई ख़ास याद है, कोई ख़ास बात है तो ज़रूर बताइए। कौन सी वाली बारिश आपको याद आती है, बचपन वाली बारिश या बड़े हुए तब की बारिश? अब तो बारिश से डरते भी होंगे, भीग जाएंगे तो कहीं सर्दी जुकाम हो जाएगा। बचपन में वो डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बीमार होने के नुकसान क्या होते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़े। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत तो इबारत में ही छुपे हुए हैं, फिर हम नहीं बताते, पर हाँ शब्द तो बता ही सकते हैं ना। तो सावन झूला, बदरा तराना, परदेसी दिल प्यार, और नूर मस्ताना इकरार, और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफर बेहद सुरीला होने वाला है, क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है, और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गानों के बोल लिखे हैं, पड़ गए झूले सवन ऋतु आए रे, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दरअसल आज आपके गाने और हमारे गाने बहुत मैच हो रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो गाने हम आप सुनना चाहते हैं वो हम लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मौसम भीगा भीगा, हवा भी ज़्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल, तुमको पाने का इरादा है, और हम घर से छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश नहीं होती, और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है, और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है। लेकिन भीगने में क्या मज़ा होता है ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफ़र प्रोग्राम में। वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है। राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे, और जानी आज उनकी फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन

अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं जिसके लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। तो जरा आप बताइए कि कौन है हीरो हीरोइन। शुरू में हम बता चुके हैं वैसे।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: अपने सुरीले सफर के शुरू में ही फिल्म जगत के ऐसे महाराजा को याद किया जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती है। सचमुच अद्भुत शख्सियत थी उनकी। गले में स्कार्फ, बात करने का रौबदार तरीका, सफ़ेद जूते पहनकर जब वो जानी कहते थे तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थीं। यूं तो उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है उनकी फिल्म वक्त का राजा का किरदार। फिल्म में वो एक चोर थे, लेकिन उनका रौब किसी महाराजा से कम नहीं था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने राजकुमार जी से जुड़ी हुई लिखी हैं। शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूला नहीं, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है।

आनंद है और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है, हवाओं में कोमल और रेशमी ठंडक के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुलती जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी टिप्पणी तो सिर्फ एक लाइन की है तो शामिल नहीं हुई भाई, लेकिन आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखी है तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि इतने दिन से मौसम और बारिश

तो शामिल नहीं हुए भाई, लेकिन आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखिए तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि इतने दिन से मौसम और बारिश के गीत बज रहे हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे शहर के मौसम से मैच हुआ है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। सुनिए अब ये गीत और याद कीजिए अपनी कोई खास बात। संगीतकार का नाम जरा बताइए और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात भी बताइए। बारिश का मौसम और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई बात है बताइएगा जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। गीतकार कौन है ये भी बताइए। फिल्म है दुल्हन एक रात की,

हमने आपसे पूछा था कि कौन है संगीतकार और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने, कुछ श्रोताओं ने जवाब सटीक दिया है। संगीतकार मदन मोहन, और ये जो जुलाई का भीगा मौसम है बार बार मदन मोहन की याद दिलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भीगे मौसम से हमारे मन से जुड़ जाते हैं। 14 जुलाई मदन मोहन साहब की याद का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। कुछ श्रोताओं ने सही सही लिखा है। एक श्रोता ने ये लिखा है कि सावन के झूले केवल डालियों पर नहीं पड़ते, वे तो हर बरस हमारे मन में भी बचपन की मीठी यादों को फिर से झूला झुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चेरापूंजी से लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ बरसात में ही होता है और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मेरे साथ रहती है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नाजायज़ फिल्म का गीत सुनवाइए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूले नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी यह आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। भाई अभी जो चेरापूंजी से जो श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती सुन रहे हैं, तो हमें

अच्छा लग रहा है ये जानकर कि उतनी दूर से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। ज़रा वहाँ के कुछ आबोहवा के बारे में, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और ये भी बताइए कि जब हमेशा बरसात होती है तो आपको एहसास कैसा होता है, क्योंकि जब लगातार बारिश हो तो कई बार ऊब भी होती है एक ही मौसम से। जैसे मुंबई में भी तकरीबन 4-5 महीने बारिश होती रहती है, तो बारिश की शुरुआत तो बड़ी सुखद लगती है लेकिन धीरे धीरे ऊब सी होने लगती है। तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ घनघोर बरसात होती है, तो आप अपने बारिश से जुड़े हुए अनुभव साझा करते रहिए, और जो आप जिन श्रोता ने चेरापूंजी से लिखा उनसे खास अनुरोध कि आप अपने अनुभव लिखिए। हाँ तो दोस्तों, हमने आपसे ये पूछा था कि संगीतकार का नाम मदन मोहन और फिल्म थी दुल्हन एक रात की, इसी फिल्म का गाना हमने अभी सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्दकार थे राजा मेहदी अली खां। और जब बात चलती है मदन मोहन की तो लगता है कि जुलाई के इस महीने में उनकी याद का दिन है और जून में उनका जन्मदिन, तो फिर क्यों ना एक गाना और हो जाए। तो मदन मोहन साहब के नाम ये गाना, और ज़रा फिल्म का नाम आप बूझिए, क्या है फिल्म का नाम।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो शर्तां लागू
2: सड़क पर पानी भर गया था ये बारिश धीमे धीमे बरस रही थी लेकिन पानी उतर नहीं रहा था मतलब पानी ज़्यादा हो गया था तब तक तो पूरी रात रोड पर ही बितानी पड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश और पानी की बातें हैं मुझे दो बूंद पानी फिल्म का शीर्षक गीत याद आ रहा है राजस्थान का खाली नहर और बारिश होने पर नहर भरे वहाँ के लोगों को जीवन मिले। अब सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना ज़रा आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम देखते हैं कौन श्रोता सही जवाब दे पाते हैं गीतकार संगीतकार फिल्म सारंगा लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं।

सारंगा फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल खुलते थे और एक परदेसी सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो परदेसी कोई और नहीं था बल्कि एक रिक्शा वाला था जो स्कूल ले जाने के लिए किसी यमराज से कम नहीं लगता था। भाई अगर स्कूल नहीं गए होते, पढ़ाई नहीं की होती तो आज क्या होते, ये याद कीजिए। और बचपन का संसार बड़ा अलग ही होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल अब तो बहुत ही कम वक्त है कि हम आपसे कहें कि यादें साझा कीजिए। बस प्रोग्राम का आखिरी गीत है जिससे पहले हम ये टिप्पणी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि बादल मेरे शहर में है, बारिश होगी कि नहीं कह नहीं सकती, पर आज मुझे खुशी है कि सब्जेक्ट के रूप में मैं पास हो रही हूँ, जवाब दे रही हूँ सही। और एक श्रोता ने, मैंने रंगली आज चुनरिया के प्रेम के समर्पण की बात की है कि मन के उल्लास का बेहद मधुर गीत है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज मेरे सुझाए 4 गाने शामिल हुए, कुछ ने लिखा है कि 3 गाने शामिल हुए, किसी ने लिखा है मेरे 6 गाने मेरी पसंद के शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा जानकर। सुनिए, एक श्रोता ने इस गाने का भी जिक्र किया है और आप सब में से कितने लोगों ने सोचा था ये गाना बजेगा अभी, फिल्म है फागुन। कोई सवाल नहीं है, आप चाहे जो जानकारी दे सकते हैं। कमर जलालाबादी के बोल, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले, ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले,
1: आंखों का उजाला पर दिसले।
2: फागुन फिल्म का गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमने सुझाया था ये गाना, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक हो गई। और एक श्रोता ने जानकारी दी, एक या कई श्रोताओं ने, कि फिल्म फागुन मधुबाला और भारत भूषण संगीतकार ओपी नैयर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, कमर जलालाबादी के बोल। अब प्रोग्राम का सफ़र आज बस इतना ही। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो से ममता सिंह के साथ।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 35वीं कड़ी।

0: राष्ट्रध्वज आज हमारा राष्ट्रीय सम्मान बिंदु है। भारतीय संस्कृति में भी ध्वज का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय युद्धों में अग्रभाग में रहने वाले ध्वज की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक संभाल कर रखा गया है। रामायण महाभारत काल में प्रमुख योद्धाओं के अपने अपने अलग अलग ध्वज होते थे। इतिहास काल में महाराणा प्रताप का चांगी नामक सूर्य के चित्र वाला ध्वज प्रसिद्ध था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक था। आगे चलकर पेशवाओं के काल में यह ध्वज उत्तर में अटक तक फहराया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई भले ही प्रत्यक्ष रणभूमि पर आमने सामने की न रही हो, फिर भी अंग्रेजों के यूनियन जैक को चुनौती देने के लिए ऐसे एक ध्वज की आवश्यकता थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय भारत का अपना एक स्वतंत्र पहचान वाला राष्ट्र ध्वज हो, यह सोच सन 1900 के बाद सामने आई।
1: 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में भारत का विशेष रूप से तैयार किया गया पहला ध्वज भगिनी निवेदिता ने प्रदर्शित किया था। उस पर वंदे मातरम शब्द बांग्ला लिपि में लिखे हुए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो पहली बड़ी सभा हुई थी, उस सभा को एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फिर से 7 अगस्त 1906 को एक सभा आयोजित की गई थी। कलकत्ता के पारसी बाग में हुई उस सभा में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के हाथों वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज फहराया गया। ये ध्वज कृष्ण कुमार मित्र, उनके दामाद सचिंद्रनाथ बोस, पुत्र सुकुमार मित्र, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त की कल्पना से तैयार हुआ था। ऊपर की हरी पट्टी पर खिलते हुए 8 कमल थे और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर चांद सूरज अंकित थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम शब्द लिखे थे।
0: बाद के विभिन्न विरोधी आंदोलनों की अनेक सभाओं में यह ध्वज फहराया गया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होने तक यह वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज लगातार उपयोग में लाया जाता रहा। इसे ही भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के आधुनिक कालखंड में फहराया गया आद्य राष्ट्र ध्वज माना जाता है। इस ध्वज का प्रभाव देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के मन पर भी पड़ा था। इस ध्वज से प्रेरणा लेकर उन्हें विदेश में भी अपना ध्वज फहराने की प्रबल इच्छा हुई होगी।
1: इसके ठीक एक वर्ष बाद 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की प्रतिनिधि के रूप में फ्रांस

0: से गई मादाम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाली थी, ये निश्चित हो गया था। उसी समय ध्यान में आया कि इस अधिवेशन में प्रदर्शित करने के लिए अपना स्वयं का ध्वज होना चाहिए। लंदन में पढ़ रहे सावरकर, मादाम कामा और सरदार सिंह राणा के बीच चर्चा होने लगी। अन्य देशों के तत्कालीन ध्वजों को देखते हुए अपना ध्वज भी तीन रंगों वाला विशिष्ट होना चाहिए, ऐसी कल्पना साकार हुई। ये ध्वज बनाते समय लंदन में ही पढ़ रहे कलाकार क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानुनगो की सहायता मिली।
1: अगस्त 1907 अधिवेशन का तीसरा दिन। सफेद साड़ी पहने हुए, पारसी पद्धति से सिर पर पल्लू लिए हुए मादाम कामा ने अपने पल्लू के नीचे छिपाया हुआ वह रंगीन ध्वज अचानक सबके सामने दोनों हाथों से ऊंचा उठा दिया। उस समय पूरे सभागृह में मादाम कामा की शुभ्र मूर्ति के कारण बिजली कौंधने जैसा आभास सारे सभागृह को हुआ। इस रंगीन ध्वज के रंग भी उतने ही तेजस्वी थे। मादाम कामा के सहज तेज को

ध्वज की ऊपरी पट्टी हरी थी, उस पर 8 प्रांतों के प्रतीक 8 कमल, बीच का रंग केसरिया और उस केसरिया पृष्ठभूमि पर भारतीय स्वतंत्रता के शब्द रूपी हुंकार वंदे मातरम और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य तो दूसरी ओर चंद्रमा थे। ये तीनों रंग जातियों या धर्मों के रंग नहीं थे, ये भारतीय संस्कृति के रंगों और मानव जीवन के गुणात्मक अर्थ को बताने वाले थे। हरा रंग धैर्य और उत्साह का, केसरिया रंग विजय और वैराग्यपूर्ण जीवन का, तो लाल शक्ति का प्रतीक था। 8 कमल भारत के उस समय के 8 प्रांतों के प्रतीक थे, तो चांद सूरज शीतलता और ऊर्जा के प्रतीक थे।

0: मादाम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखते हुए पल्लू में छिपाकर लाया हुआ ध्वज बाहर निकालकर ऊंचा उठाते हुए कहा,
1: दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बिहोल्ड इट इज बॉर्न, इट इज ऑलरेडी सैंक्टिफाइड बाय द ब्लड।
2: ये भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, देखो इसका जन्म हो चुका है, ये पहले ही भारत के शहीदों के रक्त से पवित्र हो चुका है। मैं आप सभी सज्जनों से आह्वान करती हूँ कि उठें और इस ध्वज को सलाम करें। मैं आपके सामने ये छोटा सा भारतीय ध्वज फहराती हूँ मित्रों, और भारतीय राष्ट्र के नाम पर आपसे न्याय के लिए लड़ने का आग्रह करती हूँ। मैं आपके सामने ये भारतीय ध्वज एक बार फहराती हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने जीवन काल में ही भारतीय गणराज्य की स्थापना देखने की पूरी आशा है।
1: इंडिया एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम।
2: वंदे मातरम।

विदेश में भारत का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया गया यह पहला ध्वज था। इस ध्वज पर भी बीच में वंदे मातरम शब्द लिखे थे। अंतरराष्ट्रीय परिषद में इस ध्वज ने खलबली मचा दी। ऐतिहासिक मादाम कामा के ध्वज और इस कलकत्ता ध्वज में समानता है। इस ध्वज का चित्र या प्रतिकृति भारतीय क्रांतिकारियों के माध्यम से विदेश में क्रांतिकारियों तक पहुंची होगी। इन दोनों ध्वजों में महत्वपूर्ण अंतर यह था कि वंदे मातरम शब्द दोनों ध्वजों पर होने के बावजूद कलकत्ता ध्वज पर वे पीले रंग की पृष्ठभूमि पर नीले रंग में थे, जबकि मादाम कामा के ध्वज पर वे सफेद रंग में थे, और वंदे मातरम में म अक्षर हटाकर र अक्षर पर अनुस्वार लगाया गया था। 20वीं सदी के पहले दशक में एक एक वर्ष के अंतराल पर बनाए गए भारत के पहले तीनों ध्वजों पर वंदे मातरम शब्दों को ही अग्रस्थान मिलना यही विशेषता है।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार नेहा देसाई, तकनीकी सहयोग रमेश धकाते, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है।

0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह काराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई

0: टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का

पाकीजा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कैफ भोपाली के बोल थे गुलाम मोहम्मद का संगीत था। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिल उद्यानवी के बोल हैं रवि का संगीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: हमराज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये प्रोग्राम का आखिरी गाना है। फिल्म है नूर महल, सुमन कल्याणपुर की आवाज। सबा अफगानी के बोल हैं, जानी बाबू कव्वाल का संगीत है।

नूर महल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली बस कुछ ही पलों में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए, आज किस सखी से बात हो रही है हमारी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना। वैसे मैं बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हूँ अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी, क्या करती हैं आप?
1: देखिए, वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ
0: जी।
1: मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ। मैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी में ट्रांसलेशंस करती हूँ
0: जी। ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया। ये उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी।
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है
0: जी।
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है
0: जी जी।
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया
0: जी।
1: मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं
0: जी। रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल, और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए, अगर फिलोसफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने, और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी, बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात करके।
1: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए
0: जी,
1: वो मैं सुनना चाहूंगी।
0: जी जी, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया बानो बोल रही हूँ, गुजरात से।
0: आलिया बानो गुजरात से?
1: हाँ
0: जी। आलिया बानो, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए, क्या चल रहा है इन दिनों?
1: टंकी नवा के पड़ती हूँ, घर पर ही रहती हूँ। घर के जो काम होते हैं ना, छोटे मोटे, वो सब करवा देती हूँ।
0: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है, कहीं घूमने फिरने, आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
1: हाँ जाती हूँ ना, परिवार के साथ ही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात
1: हाँ
0: है।
1: लेकिन लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है,
0: हाँ वो तो
1: दिखता
0: है।
1: है ना।
0: जी, ये तो सहयोग
1: हाँ
0: परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये
1: हाँ मेरी
0: मुझे
1: अम्मी,
0: जी
1: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है। मेरी दीदी है ना, तो मेरी अम्मी, वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे। सबसे काल मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ, मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना, तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना, कुछ काम करना होता है, तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं? यानी कि आप कदम गिन लेती हैं, या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाएं तरफ ये है, दाएं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
1: नहीं, मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना, तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है।
0: जी
1: मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना,
0: जी
1: ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ,
0: अच्छा।
1: हमारा एक माले का घर है ना, वहां कर रही हूँ,
0: जी
1: तो मैं
0: जी
1: नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ।

0: अच्छा, मतलब आप पहली मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती हैं ये सब?
1: अब मैं आप कर लेती हूँ। एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है, किस तरह से आना है, किस तरह आना है, तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं। आप इसको किस तरह से लेती हैं?
1: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। ऐसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ, लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ सहेलियों के साथ घूमती है तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती।
0: देखिए,
1: जिस हाल में रखे उस हाल में ले लेना चाहिए।
0: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है, फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुनके हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: मैडम, बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का।
0: अंदाज फिल्म का
1: है ना
0: जी?
1: हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
0: बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ।
0: क्या
1: एक
0: बात,
1: शायरा हूँ
0: जी।
1: जी एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरी कशिश, मेरा पेन नेम है लहरे।
0: पेन नेम है आपका लहरे?
1: लहरे, और मेरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका नाम है लहरी कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी
0: जी,
1: थोड़ा बहुत लिखती थी। शुरू में चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
0: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
1: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
0: जी।
1: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय एक जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
1: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस है,
0: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
1: जी, मुंबई की नहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
0: ये
1: बात क्या मैं सही बोल रही हूँ?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो
0: जी,
1: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ?
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
0: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हों, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
1: जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
0: जी,
1: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा, बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है, किनारा भी तुझ में, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारा। हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी और एक प्रेरणा भी मिल रही।

0: कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोक राव देशमुख है, मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी क्या करती हैं आप?
1: मैं मैम खाना बनाने का काम करती हूँ।
0: अच्छा, यानी टिफिन सर्विस।
1: घर में खाना बनाने को जाती, मैं रोटी ही बनाती सिर्फ। चार पांच घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे जाके
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती।
0: अच्छा।
1: फिर बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर देती हैं कि आप जाकर
1: करने वाले हैं ना यहाँ पे।
0: जी
1: टीचर है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं।
0: जी, और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो जाती हैं। जी
1: हाँ, बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का। थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी,
0: जी
1: उतनी कमाते बस। ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों रहते, माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए। हाँ।

0: भाई किया ही रहती मैं।
1: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और सकारात्मक
0: खुशी के
1: सोच
0: साथ
1: रख
0: बताते
1: के
0: हैं।
1: आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती हैं।
0: मैम मैं मेरी सहेली के नाम लेती।
1: जी ले लीजिए।
0: हाँ, बबीता ठाकुर और एक शहना शेख है।
1: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी, कि आप कौन
0: हाँ
1: सा
0: हाँ
1: गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना मैम।
1: चलिए तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: सुख और दुख की ये बातें जारी रहेंगी एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है अभी, गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत पसंद है लेडी, और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: जी हम आपकी खुशी
1: बयां नहीं कर सकती।
0: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: सुशीला महेश्वरी भोपाल से?
1: जी
0: जी। सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी, विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विविध भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म।
0: जी,
1: ये वाला गाना सुनना है मुझे।
0: जी बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, ईयर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ और एक तरह से गृहिणी हूँ।
0: तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादातर।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ, जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, ये पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ हमेशा
0: जी
1: जिंदगी में
0: जी। तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में तारा आलम को भेजे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे।
0: कहाँ से बात कर रही है वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ।
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी? सेवेंथ की।
1: हाँ।
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो
1: हाँ।
0: सुनती हैं आप?
1: हाँ, सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं? और क्या करती
1: हाँ।
0: हैं, क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है।
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो खो।
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ हाँ
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा।
1: हाँ
0: तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ, दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका क्या अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया, जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए
0: जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
1: और इतना उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप टीचर,
1: और उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई। हाँ, ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं
0: जी,
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं
0: जी।
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं
0: जी,
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ता उम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते
0: जी।
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है
0: जी।
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें
0: जी, यही हम जानना चाहते हैं, और हमारे सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप बताना चाह रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
1: नहीं ठीक है, तो मेरा मानना है हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख
0: जी।
1: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा
0: जी, यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए,
1: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्धर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं
0: जी। बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
1: ममता फिल्म का, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
0: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से दी।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर
0: जी। शांति जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हैं जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ से घर ही रहते हैं कुछ
0: जी।
1: नहीं।
0: हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना? जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आप?
1: और मैम मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता रहता है?
1: मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से, वो सुनती रहती, काम भी करती रहती।
0: हाँ, तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना?
1: हाँ जी जी
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए निकाह पिक्चर का।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।
1: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी ना मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा, वो उस अंधेरे की आदि थी। वो इसे जानती थी, वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट

जातीं। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहाँ तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहाँ लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल, अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता, लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती, किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही

उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहां वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहां मुँह छुपाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती है। नानी।

वो नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर श्रृंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस

ज्यादा बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाते। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजर कर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा, इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा, रात के नीरो सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा

एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। कैसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागू थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहां धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाट बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमन

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फली रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

वो इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरसते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो

फैल रहा था उसके वजूद में, हौले हौले चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा, तो चंदा के बिना आकाश कैसा। वे प्रेम में थे या उनके साथ पूरी

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहाँ जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी। पहले दिन से वो कहती थी प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छला।

0: हवा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब? कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझ कर थोड़ी ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निसीम है, निसीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है, उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है, अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं, उनके पास बातों का खजाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता, उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
1: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वही ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहाँ से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यही वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वही दोनों लहूलुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं? वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई माँ अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी।

जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रही फिर कहानी में लौट आई जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूं। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया जिससे उर्वशी की नींद उचट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा

अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी। उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उगाता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ ही पलों में शाम के 5 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और स्थिर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना स्थायी रूप से बंद करना होगा। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि तीस्ता परियोजना पर भारत अपने विचार पहले ही बांग्लादेश को बता चुका है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई।

0: पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथि पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेशवाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीबी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला कापो वर्दे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं बॉबी फिल्म का गीत, शैलेंद्र सिंह की आवाज और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनामिका से। लता मंगेशकर की आवाज और संगीत आर.डी. बर्मन का।

इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने बोल राजेंद्र कृष्ण के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इस समय आप हैं विविध भारती चंडीगढ़ के संग एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Social networking है क्या आखिर? Social networking दोस्तों, परिवार, सहपाठियों यानि classmates, ग्राहकों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया कार्यक्रम का उपयोग है। ब्रांड पहचान और वफादारी बढ़ाने के लिए मार्केटर्स सोशल नेटवर्किंग का उपयोग करते हैं। लोग सामाजिक नेटवर्क का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सामाजिक नेटवर्क लोगों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रखने में मदद करते हैं और ये पता लगाने का एक आसान तरीका है कि आपके सामाजिक मंडली में हर दिन क्या हो रहा है। इंटरनेट पर मजेदार और दिलचस्पी चीजों को खोजने के लिए सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर आपके मित्र और परिवार आपके जैसे ही कई हितों को साझा करेंगे। आज सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क क्या है? बहुत सारे हैं दोस्तों। सोशल मीडिया आज भी 1 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क है। कई नाम आपको दे सकते हैं, मगर आपको खुद मालूम है कि ये क्या क्या सोशल मीडिया है।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग साइट आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट

इसको प्रयोग करने वाले लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि एक आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर धमकियां, ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद या ब्लॉक कर दें। अगर यदि आप इन सोशल साइट्स का सुरक्षित तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये साइट्स बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत काम के भी है। दोस्तों, अब जानिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लाभ। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही एक नई दोस्ती का डोर शुरू हो जाता है। सोशल नेटवर्क का प्रयोग करने से आप अकेलेपन का शिकार होने से बच सकते हैं। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके बिजनेस को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट से आप हमेशा व्यस्त रह सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यह एहसास होता है कि आपको कोई सुन रहा है। इसके प्रयोग से आपको दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती है। सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण बहुत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सोशल नेटवर्किंग साइट के फायदे सुने हैं, अब सुनिए इसके नुकसान।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग के ये नुकसान है दोस्तों कि सोशल नेटवर्किंग आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। एक प्रकार की लत है, ये एडिक्शन है। आप इसके आदि होते चले जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर समय बिताना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आप इसको इतनी ज्यादा अहमियत देने लगते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीजों को आप भूल जाते हैं या अपनी जिंदगी से काट लेते हैं। ये सही नहीं है। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट से आपका डेटा और फोटो चोरी कर लिया जाता है, जिनका प्रयोग गलत कामों के लिए किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवाई नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं, जो कि मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, सोशल साइट्स पर हमेशा अपनी पूरी जानकारी न अपलोड करें। यहां से आपकी जानकारी को चोरी किया जा सकता है। अपने पर्सनल फोटो को सोशल साइट्स पर अपलोड न करें, खासकर महिलाएं, गर्ल्स। ज्यादातर 18 इयर्स या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने गलत जानकारी अपलोड करके इन साइट्स पर अकाउंट बना लेते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें। सोशल साइट्स के द्वारा बने दोस्तों को आप अपनी पर्सनल जानकारी न दें। यह हमेशा याद रखें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स नए लोगों से मिलने और सबसे जुड़ने का बस एक माध्यम है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा न बनाएं। आपके अपने लोग सोशल साइट्स के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं, इसीलिए इन साइट्स का प्रयोग आप नए लोगों से जुड़ने के लिए या अपनी नेटवर्किंग के दायरे को बढ़ाने के लिए करें, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों पर जाहिर न होने दें। सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग लगातार लंबे समय तक न करें। कई बार लोग पूरा दिन इस साइट्स पर ही बिता देते हैं, ऐसा न करें। ऐसा करने से आपके निजी जिंदगी में बहुत नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, आपका हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है और आपके रिश्ते भी। तो दोस्तों, यह थे कुछ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत।
1: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feed

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। इस समय आप हैं विविध भारती चंडीगढ़ के संग एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: IIT प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसी जी लिखते हैं,
0: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
0: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
0: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे

0: भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
1: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
0: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
1: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है।
0: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
1: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
0: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं। और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी, जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ।
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है?
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं। तुमसे और तुम्हारे

0: अरे मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आधिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
1: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
0: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
1: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
0: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
1: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
0: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
1: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
0: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
1: मामा जी, मामा जी।
2: अरे निधि, ओ आधिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
3: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
2: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
3: ये किसी खुदरी से शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
2: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा, भोज वृक्ष?
2: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
3: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
2: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
3: अच्छा।
2: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
2: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
2: हाँ हाँ, बताता हूँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
2: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
2: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
2: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
3: एपिग्राफ।
2: शाबाश निधि।
3: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
2: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
3: मामा जी आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
2: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे।

0: ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए।

0: देखते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ दीका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
3: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
2: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
3: जी।
2: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
3: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
2: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
4: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करूं, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ दिन यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती।

0: अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। सहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
1: फिर आगे बढ़ रहे हो क्या? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
0: मैं आसिफ खान हूं, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूं, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
1: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
0: अच्छा, वाह। अरे
1: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
0: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
1: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
0: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
1: चल बेटा मोती।
0: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दल प्रचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
3: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
3: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से ही सतर्क थी।

0: आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मोहलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
2: है?
1: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा?
1: हाँ,
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा। अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है। बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो हा? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।
0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे, उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
3: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
4: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनु, तू हाथी को संभाल।
3: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप, ओह कितना खून बह रहा है।
4: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनु।
5: रानी माँ, देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
4: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
5: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा।

0: की आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
1: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
2: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
3: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।

श्रोताओ, अब से कुछ ही पलों में शाम 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से

0: आधारित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट BMS इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ते आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: एक जरूरी सूचना सुनो, प्रसार भारती के अधीन आकाशवाणी चंडीगढ़ विच नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम तहत साल 2026-27 लई अप्रेंटिसशिप ट्रेनी वजों सिख्यार्थियों नूं रखण दा प्रबंध किया गया है। चाहवान उम्मीदवार जिन्हां कोल इंजीनियरिंग जां संबंधित विषय विच डिग्री होए इस सुनहरी मौके का लाभ लै सकते ने। सिख्यार्थियों नूं अप्रेंटिसशिप बोर्ड ऑफ इंडिया नवी दिल्ली के पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। योग सिख्यार्थियों नूं जुलाई 2026 तो सिखलाई दा मौका दिता जाएगा। वधेरे जानकारी लई आकाशवाणी चंडीगढ़ नाल संपर्क करो। साडा टेलीफोन नंबर है 01722606125। सूचना समाप्त हुई।
2: आहुन सुनते हैं एक गीत। आशा भोसले ते साथियों दियां आवाज़ां, इंदिवर दे बोल, संगीत राजेश रोशन दा, फिल्म दा नां है खून भरी मांग।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने माई भारत के उद्योग संघ सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर बल दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को विजन 2047 के लक्ष्यों को तय समय सीमा में धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में अपनी ईमेल आईडी जोड़ने या अपडेट करने की अनुमति दी। रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन की तैयारियां तेज की। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में हरियाणा ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया। और मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ चंडीगढ़ में 5-8 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की। और अब खबरें विस्तार से। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा है कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को विजन 2047 के लक्ष्यों को तय समय सीमा में धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में कृषि विभाग के आगामी 5 वर्षों की कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर लागत कम कर और बेहतर बाजार उपलब्ध कराकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए। बैठक में

0: प्रेम प्रभावित भूमि को सेम मुक्त बनाने के अभियान की समीक्षा भी की गई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नागरिकों को अब आधार ऐप के माध्यम से सीधे आधार में अपनी ईमेल आईडी जोड़ने या अपडेट करने की अनुमति दे दी है, जिससे आधार केंद्र जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। ये सेवा केवल आधार ऐप के माध्यम से निशुल्क उपलब्ध है, जो 1 जुलाई 2026 से 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगी। लोग अपने स्मार्टफोन पर ऐप खोलकर भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आधार ऐप पर नई सेवा उपलब्ध होने के 2 दिनों के भीतर ही 2,50,000 से अधिक लोगों ने अपना ईमेल पता अपडेट कर लिया है। रेलवे ने देश की पहली अत्याधुनिक और प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश त्रिपाठी ने प्रशासनिक व रेलवे अधिकारियों के साथ जींद जंक्शन का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर, हाइड्रोजन संयंत्र और स्टेडियम स्थित हेलीपैड का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में श्री पुष्पेश त्रिपाठी ने बताया कि सोनीपत जींद मार्ग पर हाइड्रोजन ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया जा चुका है, जबकि दिल्ली सोनीपत और जींद दिल्ली जैसे अन्य ट्रैक पर भी परीक्षण जारी है।
1: अभी ट्रायल काफी एडवांस स्टेज पे है। स्पीड ट्रायल सोनीपत से जिन सेक्शन में हो गया, बाकी सेक्शंस में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ट्रायल जल्दी जल्दी खत्म कर लें, और ट्रायल जैसे सफलतापूर्वक हो जाएंगे तो अप्रूवल मिलने के बाद से गाड़ी का परिचालन करना शुरू करेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में हरियाणा ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। राज्य को 100 में से 95.21 अंक मिले हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करना आधुनिक तकनीक आधारित और नागरिक केंद्रित न्याय व्यवस्था की तरफ एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का पहला स्थान मिलना बेहतर योजना, गहन प्रशिक्षण और हर पुलिस अधिकारी की मेहनत का नतीजा है। पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मॉनसून के आगमन के बाद हुई वर्षा से अधिकतम तापमान में गिरावट से लोगों को लू की स्थिति से कुछ राहत मिली है। हरियाणा के राजस्व एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 14 के लेबर चौक पर क्रम में श्रम टोकन आधारित लेबर चौक प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये पहल श्रमिकों को सम्मान, समान अवसर और पारदर्शी रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री गोयल ने कहा कि अब लेबर चौक पर कार्य आवंटन टोकन के आधार पर व्यवस्थित ढंग से होगा।
2: पर चौक से 50 लेबर या 250 लेबर आज के दिन जाती है तो क्रम से जाए, 250 लोगों को रोजगार मिल गया, अगले दिन जब आए तो कोई 50 रह गए थे उनसे रोजगार शुरू होगा पर्ची के माध्यम से, कि सभी लोगों को महीने के अंदर रोजगार मिल सके। उसके अलावा अक्सर ऐसा होता है हमारे मजदूर भाई आते हैं, महीने में काम करते हैं, कुछ लोग काम कराते हैं ठेकेदार और भगा देते, पैसे नहीं देते। हम ये भी व्यवस्था करेंगे, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके ले जाएगा, आपकी मजदूरी का एक एक पैसा उन्हें देना पड़ेगा।
0: श्री विपुल गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित इस प्रणाली से श्रमिकों का पंजीकरण, कार्य आवंटन और श्रम प्रबंधन डिजिटल एवं पारदर्शी होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कल ली जाने वाली तृतीय स्तर की हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि आज बोर्ड मुख्यालय से परीक्षा के प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी जिला मुख्यालयों के लिए रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि 73,091 अभ्यर्थी 238 केंद्रों पर ये परीक्षा देंगे। परीक्षा शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होगी। बोर्ड ने सभी जिलों के प्रशासन, पुलिस विभाग एवं परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों से समन्वय बनाकर परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने का आह्वान किया है। बोर्ड अध्यक्ष

0: विपक्ष ने अभ्यर्थियों से भी बोर्ड द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर 6 जुलाई को अंबाला छावनी में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे।
1: जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 6 तारीख को जयंती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान 2 निशान 2 संविधान नहीं रहेंगे। उन्होंने इसके विरोध में बिना परमिट कश्मीर जाने का फैसला किया। उन्होंने इस यात्रा के दौरान एक दिन अंबाला छावनी में जनसभा की, इसलिए अंबाला छावनी में बहुत बड़ी जनसभा की जा रही है, जिसको जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वो एड्रेस करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और प्रदेश की प्रधान भी आएगी और भी कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
0: कार्यक्रम का आयोजन सुबह 9 बजे सुभाष पार्क के सामने किया जाएगा। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में आयोजित महारोजगार मेले का शुभारंभ किया। खेल राज्य मंत्री ने अपने जन्मदिन पर HBM ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा संचालित एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई। ये एम्बुलेंस पलवल विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को 24 घंटे निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। इस अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। रोजगार मेले को लेकर श्री गौरव गौतम ने कहा, जिला प्रशासन और जिला रोजगार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर बल दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को विजन 2047 के लक्ष्यों को तय समय सीमा में धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में अपनी ईमेल ID जोड़ने या अपडेट करने की अनुमति दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: सुरक्षित जीवन होंगे पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। भारत ने मुस्तहरा कि पाकिस्तान वालों सरहद पार दहशतगर्दी में लगातार हमायत के जवाब सिंधु जल संधि अजे भी मुलतवी है। पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि सूबा सरकार ने मावा दिया सत्कार योजना तहत खातों च घट पैसे पा के पंजाब दौरतों धोखा किया है। कपूरथला भी स्कूलों के आले दुआले एनर्जी ड्रिंक्स की विक्री से मुकम्मल पाबंदी लाने के हुक्म जारी किए गए ने। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड का कहना है कि सूबे विच बिजली की स्थिति पूरी तरह वांगे। चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने 6 तो 9 जुलाई तक पंजाब ते हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों के नाल नाल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच गरज चमक नाल भारी मीह का येलो अलर्ट जारी किया है। हुण खबरां विस्थार नाल। भारत ने दोहराया कि पाकिस्तान वालों सरहद पार दहशतगर्दी नूं लगातार हमायत देने दे जवाब विच सिंधु जल संधि IWT अजे भी मुलतवी है। अज शाम नवी दिल्ली विच मीडिया नूं जानकारी देंदिया विदेश मंत्रालय दे बुलारे रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि ते भारत दा रुख स्पष्ट रहा है। उन्हें कहा कि पाकिस्तान नूं सरहद पार दहशतगर्दी तो भरोसेयोग अते स्थाई तौर ते पिछे हटना होगा।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि सूबा सरकार ने मावा धियां सत्कार योजना तहत जनरल वर्ग को सिर्फ 1,000 रुपए प्रति महीना ते पट्टी दर्ज जाता वर्ग को 1,500

0: हुणे तुसी सर्वन कर रहे सी प्रोग्राम अमृत बाणी दे तहत कुछ शब्द। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।
1: एक जरूरी सूचना सुनो, प्रसार भारती दे अधीन आकाशवाणी चंडीगढ़ विच नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम तहत साल 2026-27 लई अप्रेंटिसशिप ट्रेनी वजों सिख्यार्थियों नूं रखण दा प्रबंध किया गया है। चाहवान उम्मीदवार जिन्हां कोल इंजीनियरिंग या संबंधित विषय विच डिग्री होए इस सुनहरी मौके का लाभ ले सकते ने। सिख्यार्थियों नूं अप्रेंटिसशिप बोर्ड ऑफ इंडिया नवी दिल्ली दे पोर्टल ते रजिस्ट्रेशन करवाउणा लाजमी है। योग सिख्यार्थियों नूं जुलाई 2026 तो सिखलाई दा मौका दिता जाएगा। वधेरे जानकारी लई आकाशवाणी चंडीगढ़ नाल संपर्क करो। साडा टेलीफोन नंबर है 01722606125। सूचना समाप्त हुई।
2: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लई स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
0: श्रोतो, बस कुछ ही पलां दे इंतजार बाद तुसी सुनोगे विविध भारती मुंबई तो अगला प्रोग्राम जयमाला।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है उपकार।

0: लीजिए सुनिए, भारतीय सेना गीत गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक बिन, तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, इससे पहले आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। दिल एक मंदिर, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

नील कमल। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल हैं साहिर लुधियानवी के, तर्ज है रवि की।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मुकेश की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

0: की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए सुनिए अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है खयाम की, फिल्म का नाम है चंबल की कसम।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय माला।

श्रोताओं, हवा महल में आज आप सुनेंगे पड़ोसी का कैमरा, ये प्रहसन। लेखक हिमांशु श्रीवास्तव, निर्देशक भगवान साहू।

0: मिठाई लाल जी, ये दोनों हाथों में रबड़ी कपटी, खूब रबड़ी खाओ भाई, मौसम सर्दी का आ गया, यही वक्त है सेहत बनाने का।
1: अरे रे मनीष शंकर, अरे हाँ, ये हैंडबैग आज क्यों इतना भारी?
0: कोई खास बात नहीं, एक कैमरा खरीदा है।
1: कैमरा?
0: हाँ,
1: यानी फोटो खींचने वाला कैमरा।
0: हाँ भाई, जमाने से सोच रहा था कि।
1: अरे दिखलाओ भाई दिखलाओ, जरा कमाल कर दिया तुमने।
0: यहाँ राह में दिखाऊं यार?
1: अरे यार आज इतवार है, कई दुकानें बंद है, चलो किसी दुकान पे।
0: अरे रे कल वल देख लेना, कैमरा है बस, कोई अचंभे का बच्चा तो है नहीं। अभी जाओ रबड़ी खाओ, कई कपटी हाथ से छूट पड़ी तो।
1: अच्छा भाई।
2: मुक्ता, ओ मुक्ता
3: आई।
0: अरे भाई जरा इस बैग को होशियारी से पकड़ो तो।
3: क्यों क्यों, क्या है बैग में और कहाँ रह गए इतने देर? रविवार को भी घर से बाहर, सर्दी गिरने लगी और समय भी।
0: कोई ज्यादा देर तो नहीं हुई, 7:00 यही कोई 48-49 मिनट।
3: अरे बैग तो थोड़ा भारी लगता
0: है। अरे क्या है इसमें? संभाल के संभाल के मुक्ता।
3: क्या होगा, कोई अच्छी सी साड़ी या ब्लाउज पीस?
0: बस बैग मत खोलो और समझ जाओ कि इसमें क्या है, तो मान लूं कि हो लाल बुझक्का।
3: और जनाब मैं हार मान लूं तो मेरी कौन सी बेइज्जती हो जाएगी?
0: तो मान लो हार।
3: मानती हूँ।
0: इसमें कैमरा है मेरी जान।
3: सचमुच?
0: हाँ बिल्कुल, हाथ कंगन को आरसी क्या देख लो निकाल के।
3: अच्छा, अरे ओहो, ये तो बहुत अच्छा है। चलो अच्छा किया, तुम्हें बहुत दिनों से एक कैमरा लेने का शौक था।
0: देखो डार्लिंग, इसके लिए मैंने वो पैसे बटोर के रखे थे जिन्हें तुम मेरी जेब खर्च के लिए देती थी।
3: अच्छा,
0: खुश होना।
3: क्यों नहीं, मैं तो खुद सोचती थी कि किसी तरह तुम्हारा ये शौक पूरा हो जाए। अच्छा चलो खाना खा लो, रोटी ठंडी हुई जाती है।
0: अच्छा चलो।
4: घर में हो भाई यार?
0: ये तो बेखबर बाच रिपेयरिंग हाउस वाला है, क्यों मुक्ता?
3: हाँ नजाकत हुसैन।
0: ये तो भयानक गप्पी है, चाय भी न पी सका। और अच्छा खैर, तुम उसे भी चाय पिला देना और रसोई की तैयारी।
3: अच्छा पहले दरवाजा तो खोल दो।
4: भाई बाबा क्या कहने हैं, मुबारकबाद देने आया हूँ।
0: अरे काहे की मुबारक नजाकत साहब,
4: आपके भी नखरे का जवाब नहीं भाईजान, रात अच्छा खासा नया कैमरा ले आए।
0: कैमरा? ओह कैमरा, आपसे किसने कहा?
4: अरे कहेगा क्या कोई दुश्मन, दुश्मन तो सुनकर बस चलेगा ही।
3: आखिर हम भी तो सुने सही।
4: हाय हाय, भाभी साहिबा के भी क्या कहने हैं, कुर्बान जाऊं। अरे ये जो अपना पड़ोसी है ना, कंपाउंडर मिठाई लाल, उसी ने बतलाया। खैर कोई बात नहीं, मणिशंकर भाई।
0: हाँ।
4: आज सूरज डूबने से पहले मेरे दोनों

0: की तस्वीर,
1: बच्चों की तस्वीर।
0: हाँ हाँ हाँ, दुकान में अपनी सीट के सामने फ्रेम कराकर लगा दूंगा।
1: अरे मुक्ता, इन्हें चाय पिलाओ भाई। अच्छा भाई, दोनों बच्चों की तस्वीर तो खींच दूंगा, मगर फिल्म और धुलाई का खर्च।
0: बस बस बस बस, ये मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात यकीन करने को नहीं कि तुम मुझसे इनका खर्च लोगे। तो भाई रही बात पक्की? क्यों?
1: अच्छा रही पक्की।
0: अच्छा तो मैं चल आ।
2: अरे चाय तो।
1: अरे जाने भी तो, लाओ एक कप मैं पी लेता हूँ और एक कप तुम पी लो।
2: कौन?
3: मैं हूँ गुरु घंटाल।
2: अरे राम, ये तो अपने मकान मालिक हैं।
1: तो खोल दो दरवाजा और तुम भीतर चली जाओ।
2: अच्छा।
3: जय राम जी की, मनी शंकर बाबू, कहिए क्या हाल चाल है?
1: बस दुआ है आपकी। कहिए कैसे कृपा की?
3: अरे भाई, सुना कि कैमरा लाए हैं आप।
1: जी हाँ, ले तो आया हूँ।
3: बस तो बच्चों का मन रख दीजिए, मेरी बेबी भी चाहती है।
1: क्या चाहती है?
3: है बात यह है कि कल मेरी छोटी बच्ची अपनी गुड़िया का ब्याह पड़ोस की लड़की के गुड्डे से रचा रही है।
1: अच्छा अच्छा।
3: मत पूछिए, बहुत से लड़कों का हुजूम रहेगा। हाँ। करीब 8 बजे रात में आप उसी अवसर पर सिर्फ 15-20 फोटो।
1: मगर गुरु घंटाल जी, रात को फोटो लेने के लिए तो फ्लैश लाइट चाहिए और वो तो मेरे पास है नहीं।
3: अजी साहब, तो कौन बड़ी जमा पूंजी लगती है, एक फ्लैश लाइट खरीद लीजिए, आपके और भी काम आ जाएंगी। तो रहा पक्का कल रात 8 बजे, भूलना नहीं। अच्छा तो मैं चलूं।
2: क्या कह रहे थे, शायद फोटो लेने की बात?
1: मत पूछो, समझो कि मैं मर गया। अच्छा मुक्ता, एक बात तो बताओ, रखती हो कुछ अपने पास?
2: मतलब?
1: कुछ पैसे हैं, फ्लैश लाइट खरीदनी है।
2: थोड़े से पैसे रख छोड़े हैं, दे दूंगी।
1: और भी मकान मालिक है, और हाँ रसराज को भी तो फोटो देना है। स्टूडियो में धुलने और प्रिंट करने को दे आया हूँ, पैसे ही नहीं है कि लाऊं, और रसराज है कि सुबह शाम तक आदा करता है।
2: अच्छा, वो कवि महोदय, धुलाई और प्रिंट के पैसे क्यों नहीं मांग लेते तुम?
1: अरे भाई वो कवि है ना।
2: मगर मुझे उस रोज एक बात अच्छी नहीं लगी।
1: क्या?
2: वो मेरे साथ फोटो लिवाने को मचल गया। हाँ। और तुम भी तैयार हो गए, अपने दोस्तों को दिखाएगा और।
1: अरे राम राम राम राम, रसराज ऐसा नहीं कर सकता, कितना आदर करता है तुम्हारा।
2: कोई आया है,
1: देखो तो सही।
4: जयराम जी की, मनी शंकर भाई।
1: ओहो, जयराम जी की, जयराम जी की। कहिए मिठाई लाल जी, कैसे कैसे पधारे?
4: अरे भाई, तुम फोटो खींचने का कैमरा क्या ले आए, मुझसे नाता ही तोड़ लिया। कवि जी की तस्वीर ली गई, मकान मालिक गुरु घंटाल जी की बेटी ने गुड़िया का विवाह रचाया तो उस अवसर की तस्वीरें ली गई, और क्या नाम है, नजाकत हुसैन के बच्चों की तस्वीरें उतारी, और फिसड्डी पड़ा तो मैं।
1: क्या गजब हो गया, कहो भी तो।
4: अरे भाई, मुझे क्या घर परिवार नहीं है, क्या मैं अरमानों की दुनिया से दूर हूँ, या कि तुम मेरे पड़ोसी नहीं?
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा कौन कहता है भला।
4: तो फिर आज तुम दफ्तर से सूरज डूबने से पहले आ जाओ, मेरे बच्चे और बच्ची की तस्वीर खींच दो, बच्ची को राधा और बच्ची को कृष्ण का मेकअप कराऊंगा।
1: मगर बात यह है मिठाई लाल जी कि फिल्म धुलाई और प्रिंट का खर्चा।
4: जी हाँ जनाब, जैसे वे आपके बच्चे ही नहीं। छोड़ो ये चोचले, बस आज शाम याद रहे, सूरज डूबने से पहले मैं उन्हें तैयार रखूंगा।
2: हे भगवान, ये कौन पहुंचा?
0: दरवाजा खोलिए भाईजान।
5: आदा वर्दे नजाकत भाई।
0: भाई माफी चाहता हूँ गुस्ताखी के लिए।
1: क्यों, क्या हुआ? आज तो तेवर ही बदले हुए जनाब के।
0: भाई साफ इनकार कर जाते तो अच्छा था, बच्चों की तस्वीर क्या ली, सब कूड़ा कर दिया। खुदा की कसम, 4 रोज तस्वीर लगाई नहीं कि उनका प्रिंट ही उड़ने लगा। लोग कहते हैं पड़ोसी के साथ मुरव्वत करो, मिल तो गया नतीजा मुरव्वत का, आकर दुकान में ले लेना वो तस्वीरें। अच्छा मैं जा रहा हूँ।
2: ये तो अच्छा अंजाम मिला मुफ्त तस्वीर खींचने का।
1: खैर क्या करना है, तरह तरह के लोग हैं। अच्छा मुक्ता, जरा वो मेरा बैग तो लाना, कल बंबई से तुम्हारी बड़ी जीजी का पत्र आया है। है तो वो मेरी केयर ऑफ, मगर लिखा है पर्सनल, निकाल के पढ़ लो। और हाँ, एक मैगजीन भी रखी है, उसमें लाना तो जरा।
2: अभी लाती हूँ।
1: पढ़ लिया पत्र, सब ठीक ठाक तो है ना?
2: हाय, ये तो गजब हो गया। जरा वो मैगजीन तो खोलना, पेज 19।
1: क्या बात हुई?
2: अरे रे रे रे, उस पत्रिका में कवि रसराज ने वो तस्वीर छपवा दी जो मेरे साथ ली थी उसने।
1: अरे सच?
2: हाँ हाँ, देखो तो सही।
1: ये तो रहा पेज 19 है, रसराज की कविता छपी है इसमें, मिलन वेला। ठीक वही फोटो, नीचे छपा है कवि जीवन संगनी के साथ।
2: और ये पत्र पढ़ो, जी जी क्या लिखती है।
1: प्रिय मुक्ता, तुमने जो गलत कदम उठाया उसके लिए हम लोग समाज और बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। भला मणिशंकर में क्या गुण था? मणिशंकर अगर तुम्हारे पास मेरा ये पत्र पहुंचा दे तो फौरन उत्तर दो कि क्या मामला है। मैंने पिताजी से भी इस बारे में सही खबर देने को कहा है, उन्हें तो बड़ा सदमा पहुंचा।

0: मैगजीन के प्रति भेज रही हूँ जिसमें तुम्हारे कवि पति के साथ तुम्हारी तस्वीर छपी है। अरे राम राम राम, इस रसराज ने तो बाहर डाला हमें। देखो तो सही कौन आया है मुक्ता।
1: अजी क्या हुआ उन तस्वीरों का मणि शंकर जी?
0: वो बात यह है गुरु घंटाल जी, वो बात यह है कि तस्वीरें तो 15-20 हैं और उनकी धुलाई और प्रिंट का खर्चा।
1: दिल में कालापन क्यों रखते हैं साहब? उस रोज तो फ्लैश लाइट का रोना रोते रहे। मकान में जब आए थे तो कहा था भाई बनकर रहूंगा और अब बच्चों के लिए 10-5 का भी मुंह देखने लगे।
0: जी हर महीने एडवांस किराया देता हूँ, इतना ताप क्यों सहूं?
1: तो मत सहिए ताप, बड़े मातवर है तो मकान खाली कर दीजिए। जब मकान मेरे पास तो बहुत किरायेदार मिलेंगे। मकान किराए पर क्या दिया था, कोई पगड़ी नहीं ली थी। मुझे ऐसा जुबानी भाई नहीं चाहिए। कब करते हैं मकान खाली?
0: बस जितनी जल्दी होगा।
1: तो बस जल्दी करें, मैं टूलेट की प्लेट टांगने जा रहा हूँ। जयराम जी की।
0: जयराम जी की।
2: ओफो, तुम तो बुरे फंसे कैमरा लेकर। अच्छा मैंने तुम्हें रात बतलाया नहीं
0: क्या?
2: वो पड़ोसी है ना कंपाउंडर मिठाई लाल, वो लाहना देने आए थे। फोटोग्राफी नहीं खाक जानते हैं। राधा भी तस्वीर में गोरी आ गई और कृष्ण भी गोरा आ गया। बेटी तो उनकी एक आंख से कानी है, कहने लगे ज्यों की त्यों तस्वीर उतार कर बच्ची का मजाक उड़ाया है।
0: हे भगवान, कहां से ये कैमरा खरीद लिया मैंने?
2: और अपने कवि मित्र रसराज से नहीं पूछोगे कि ये कांड क्यों किया?
0: उसकी याद मत दिलाओ मुक्ता, ऐसे नादान दोस्तों को मुंह नहीं लगाऊंगा कभी। अच्छा अभी चलता हूँ बाहर, एक मित्र के मकान का आधा हिस्सा खाली पड़ा है, तुम तब तक सामान संभालो। मैं चला।
2: और गुरु घंटाल जी तो?
0: मुक्ता भाभी माफ कर दो, इस कवि देवर को माफ कर दो। संपादक ने कविता के साथ छपने के लिए मेरी तस्वीर मांगी थी, मेरे पास अलग से अपनी कोई तस्वीर नहीं थी। मैंने तुम्हारे साथ वाली तस्वीर भेज दी और संपादक को यह बतलाना भूल गया कि महिला का चित्र बचाकर काट ले तब छापे।
2: मगर हद हो गई कवि जी, मेरी तो ऐसी की तैसी हो रही है।
0: जो भी हो माफ कर दो भाभी, मैं तो शर्म से दुबला होता जा रहा हूँ। गम में आज दाढ़ी बनाई तो क्रीम नहीं लगाई, देखो आंखों में सुरमा तक नहीं डाला।
2: बस बस बस अभी भाग जाओ, कहीं वो आ गए तो।
0: चलो मुक्ता ताना खड़ा है, सामान लगवाओ। कम वक्त कैमरे को भी बेच आया, उसके साथ जहां जाते के शोर होता, पड़ोसी के पास कैमरा है।

अभी आप सुन रहे थे हिमांशु श्रीवास्तव का लिखा प्रहसन पड़ोसी का कैमरा। इसके निर्देशक थे भगवान साहू। आकाशवाणी पटना की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, आपको याद दिला दें कल के कुछ कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार रामलाल पर।

कल दोपहर 3 बजे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होगा मनचाहे गीत। दोपहर बाद 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए बॉम्बे टॉकीज में गीतकार सुधाकर शर्मा से की गई मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग। कल शाम 7 बजे विशेष जयमाला में सुनिए पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आपको सुनवाएंगे सुनो कहानी में मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विश्वास का पहला भाग। कल रात 9:30 पर आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार भरत व्यास पर।

रात 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत और देश विदेश की ताजा तरीन खबरें जानने के लिए सुबह व शाम 6 बजे मध्यान्ह 12 बजे

सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 पर दोपहर समाचार और रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या सुनिए। तो ये थी जानकारी कल के कार्यक्रमों के बारे में।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है तेजाब।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।

लीजिए सुनिए अगला गीत कविता कृष्णामूर्ति करसन सरगतिया और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है महबूब, संगीतकार है इस्माइल दरबार, फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
3: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल, कविता कृष्णामूर्ति, केके और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है नुसरत बद्र ने, तर्ज है इस्माइल दरबार की, फिल्म का नाम है देवदास।

विविध भारती मुंबई तो हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम चित्र लोक। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz ते। हुण तो कुछ ही पलां च असी आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो समाचार रिले करांगे। 8:45 ते तुसी सुनोगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

0: पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिली इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच

0: तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए 2 संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा

से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9000 लोगों की मौत और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार हैं कैफी आजमी, संगीतकार हैं मदन मोहन, फिल्म का नाम है हीर रांझा।

0: अंधेरे का इशारा समझो, दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ोगी?
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनाओ।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अगला गीत। नगमा निगार है कैफ भोपाली, संगीतकार है गुलाम मोहम्मद, फिल्म का नाम है पाकीज़ा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं परवेज शमसी, धुन है सी रामचंद्र की, फिल्म का नाम है नौशेरवानी आदिल।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर।

कार्यक्रम का अगला गीत है महेंद्र कपूर की आवाज में, गीतकार है साहिर लुधियानवी, धुन है रवि की, फिल्म का नाम है हमराज़।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है लाल पत्थर।

0: साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत

दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट

0: पेश प्रोग्राम आज के फनकार।
1: ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने जानी राजकुमार पर।
2: दिल गया रौनके हयात गई, गम गया सारी कायनात गई।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में यह ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई, मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
3: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजा के बाद।

ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है, वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता, उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे, न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थी, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थी, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पर आई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चुनाव सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चुनाव सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: ये रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गई। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है। वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा यह है चुनाव सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा। जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेहपुर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर, वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

राजकुमार एक रहमदिल मगर मुंहफट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में सरती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो
0: बजता है

0: है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। जब कभी अनमनी सी होकर शाम दिन के आंचल को झटक देती है, खुद को समेट लेती है अपने खेमे में, तो क्षितिज गुनगुना कर उसे मनाता है। कोई दिलकश सा नगमा चुनकर उसके उदास मन को गुदगुदाता है।

का खोना कभी आसान नहीं होता। उसकी धड़कनें बता देती हैं वो छिपा है कहाँ। हर लम्हा समंदर की लहरों की तरह उठती गिरती है, जैसे आवाज लगाती है, कभी देखो तो यहाँ। इन्हीं लहरों की रवानी में गूंज उठता है दिल को चुराता हुआ कोई मीठा नगमा।

कैसे बताए कि चंद अल्फाजों से एक गुलशन किस तरह खिल उठता है, उम्मीदों का दरख्त कैसे झूम उठता है, किस तरह उस पर फूलों की तरह दुनिया के तमाम हसी रंग सज जाते हैं, और कैसे उसकी डालों पर बैठे ख्वाबों के पंछी सरगोशियां करते हैं, गुनगुनाते हैं।

0: जिंदगी जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

वो रात जब चांद अपनी ही धुन में कुछ बुझा बुझा सा हो, धुंधलाया आसमान शांत झील सा लगता हो, सितारे तैरने लगते हैं यूं जैसे बत्तखों के झुंड, और कभी कश्तियों का रूप धर लेते हैं। इन्हीं कश्तियों पर जब बैठने को मचलता है दिल, तो चांद की बेदिली खुद ब खुद मिट जाती है। भीनी भीनी चांदनी के संग वो छेड़ देता है कोई अफसाना दिलकश सा।

हर रोज कुछ ऐसा ही होता है। दिन कुछ दिल फरेब नगमे कलम बंद करता है और फिर बड़े जतन से उन्हें वक्त के आंचल में संजो देता है। देर रात की छाया में हर रोज ये सुरीले गीत जाग जाते हैं। दिन की पेशानी पर रखते हैं मीठा सा बोसा और पलकों पर सुकून सजा जाते हैं।

0: गया गीत में आज बस यहीं तक, दीजिए राजुल को इजाजत, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक।

0: प्रजा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सामू और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: विविध भारती मुंबई तो हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम छाया गीत। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। हुण पेश ने मुख प्रदेशक खबरां।

0: करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
1: एक जरूरी सूचना सुनो, प्रसार भारती दे अधीन आकाशवाणी चंडीगढ़ विच नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम तहत साल 2026-27 लई अप्रेंटिसशिप ट्रेनी वजों सिख्यार्थियों नूं रखण दा प्रबंध किया गया है। चाहवान उम्मीदवार जिन्हां कोल इंजीनियरिंग जां संबंधित विषय विच डिग्री होए इस सुनहरी मौके दा लाभ लै सकदे ने। सिख्यार्थियों नूं अप्रेंटिसशिप बोर्ड ऑफ इंडिया नवी दिल्ली दे पोर्टल ते रजिस्ट्रेशन करवाउणा लाजमी है। योग सिख्यार्थियों नूं जुलाई 2026 तों सिखलाई दा मौका दिता जाएगा। वधेरे जानकारी लई आकाशवाणी चंडीगढ़ नाल संपर्क करो। साडा टेलीफोन नंबर है 01722606125। सूचना समाप्त हुई।
2: प्रोग्राम सुरसांझ दे गीत तुसी सुनोगे दिलजीत दोसांझ दी आवाज़

लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो इस वेले तुसी सुन रहे हो सुरा नाल सजी शाम। प्रोग्राम दा नाम है सुरसांझ। प्रोग्राम सुरसांझ दा अगला गीत पेश कर रहे हैं अमरिंदर गिल दी आवाज़

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: इंडिया डेवलपमेंट असिस्टेंस
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के

0: भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले रात दे 11:05 ते 13 सेकंड होए ने। साडी अज दी सभा हुण खत्म हुंदी है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडे नाल फेर मुलाकात होवेगी। तद तक लई सानू दवो इजाजत। जय हिंद।